ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.3 और यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है, शक संवत 1942 की ज्येष्ठ मास की 24वीं, तदनुसार 14 जून 2024। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुई है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद हुरमुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों

0: में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम वंदना का सबसे पहला सुमन अर्पित करते हैं मातृभूमि के चरणों में। कदम बढ़ाओ आओ राही, बनो देश के वीर सिपाही, कभी न पीछे हटना चाहे पथ में तूफान, जय जय हिंदुस्तान। सबका साथ निभाना सीखो, जितने धर्म और भाषाएं, सबका हो सम्मान, जय जय हिंदुस्तान। जय जय।

तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव साकार हो। तुम ही कर्ता, तुम ही हर्ता, तुम ही पालनहार हो। मेरे तो मन में रमे हो, मंत्र में ओंकार हो।

सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता हमेशा नहीं रहते। संसार में ऐसा कोई भाग्य का धनी नहीं जो सदा सुखी हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं जिसे हमेशा दुख ही दुख हो। ये तो सांसारिक परिस्थितियां हैं जो आने जाने वाली होती हैं। इनसे व्यथित न होकर सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। ईश्वर का स्मरण मात्र ही विषम परिस्थितियों से उबार लेगा।

नन्हे नन्हे चरण, पैरों में रुनझुन करती पायल, अधरों पर मनमोहक मुस्कान और आंखों में अनगिनत शरारतें। ये है गोकुल के लाडले कान्हा का बाल स्वरूप। उनकी पायल की झनकार मानो प्रेम, भक्ति और आनंद का संगीत बनकर आज भी भक्तों के हृदय में गूंजती है। आइए उसी मधुर अनुभूति के साथ सुनते हैं ये सुंदर भजन।

तराना इत्यादि आप सुनते हैं, वैसा ही ये एक और प्रकार है। इसे चतुरंग कहते हैं। चार अंगों का इसमें समावेश है। राग मिश्र

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, अनूप जलोटा और साथियों की आवाज़ों में भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। समय हुआ है कार्यक्रम चिंतन का। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं कस्तूरी रंगा अयंगर के विचार।
1: संसद का अपना एक अलग महत्व है। राष्ट्र की एक समिति होने और जनता के विचारों का माध्यम होने के कारण यह एक ऐसी रंगभूमि है जहां न केवल सामान्य बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक जाति और धर्मों के विचार रखे जा सकते हैं, और जो भी उसका सदस्य है वह अपने विचारों को यहां सबके सामने व्यक्त कर सकता है और उस पर तर्क करने का हक रखता है। ये शब्द हैं कस्तूरी रंगा अयंगार के। इन शब्दों से ये आभास मिलता है कि प्रत्येक नागरिक के पास अपने मौलिक अधिकार हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करने से पूर्व यह मनन करना अनिवार्य है कि हम कहीं उनका अनुचित उपयोग तो नहीं कर रहे। कोई निर्णय करने से पहले विचारों की दृढ़ता, लक्ष्य की पवित्रता, स्वस्थ समीक्षात्मक दृष्टि, दिमागी खुलापन होना अनिवार्य है, तभी आप कोई निर्णय निष्पक्ष रूप से ले सकते हैं। कस्तूरी जी के अनुसार ठाट बाट, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन तथा दिखावे की प्रवृत्ति न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं। मैंने सदैव विचारों की सुंदरता और आत्मा की रोशनी को पाने का प्रयत्न किया है। वास्तव में आज के समय में कस्तूरी जी के ये विचार निश्चय रूप से ही अनुकरणीय हैं। एक पत्रकार के रूप में कस्तूरी जी का जीवन आदर्शमय था। एक बार उन्होंने कहा था, पत्रकारिता एक बड़े दायित्व का कार्य है। पत्रकार का कार्य देश के विचारों का अध्ययन करना और उन विचारों का निश्चित तथा निडर व्याख्यान करना है। संपादक को यह आभास रहता है कि देश किस ओर अग्रसर हो रहा है, समय की मांग क्या है, परिस्थितियां क्या कह रही हैं। पत्रकार का कर्तव्य है कि वह देश की स्थिति का अध्ययन करे तथा सटीक और निष्पक्ष अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। आपसी मेलजोल, प्रेम, सद्भाव के लिए आपसी विचारों का आदान प्रदान होना अनिवार्य है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के निकट जाकर ही आप आत्मीयता, अपनापन प्राप्त कर सकते हैं, और या यूं कहें कि एक दूसरे को समझ सकते हैं। कस्तूरी जी का मानना था कि हमें सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन हम तो यहीं पर भूल कर जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, तुम यदि किसी को जानना चाहते हो तो तुम्हें सहिष्णु और त्यागी होना होगा। जब तुम स्वयं कुछ कहते हो तो ये इच्छा रखते हो कि दूसरा तुम्हें सुने, परंतु जब दूसरे की बारी आती है तो तुम या तुम्हारी असहिष्णुता तुम पर हावी होने लगती है। बस यहीं से हार

0: और मन मुटाव शुरू हो जाता है। जबकि सत्य तो ये है कि तुम जितना दूसरों को सुनोगे उतना ही उन्हें ग्रहण करोगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सौदा घाटे का नहीं है, इसलिए किसी को जानना चाहते हो तो उसे सुनो और उसे मानसिक संतुष्टि दो।
1: कस्तूरी अयंगर के विचार चिंतन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी की आगरा केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, जिसमें आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर एमसी अग्रवाल आपको जानकारी देंगे कंपोस्ट की उपयोगिता विषय पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर अर्चना राजपूत चर्चा करेंगी परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां विषय पर। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुबह 7:30 बजे। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुनिएगा सुबह 8:45। इसके अलावा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरता आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजिशा हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:25 पर। लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा सुनिएगा सुबह 9:15 पर। लोक संगीत कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर आप सुन सकेंगे सत्य प्रकाश शुक्ला की गायी कुछ ब्रज लोक गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 पर आप सुन सकेंगे उस्ताद अमीर खान द्वारा प्रस्तुत गायन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे राग तोड़ी और राग नट भैरव पर आधारित गायन प्रस्तुत करेंगी विदुषी सविता देवी। कार्यक्रम का समय ध्यान रखिएगा सुबह 10:30 बजे। दिल्ली केंद्र से प्रसारित प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 सुना जा सकेगा आज सुबह 11 बजे। दोपहर 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा रामदास बालक चटपट और साथियों द्वारा प्रस्तुत ब्रज लोक गीत। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई तराने सुनिएगा दोपहर 12:30 बजे। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं का कार्यक्रम बाल मंडल सुना जा सकेगा आज दिन में 1 वर्ष पर। कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे रक्तदान में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा, पढ़ाई और मनोरंजन में संत विषय पर रोचक जानकारी। इसके अलावा बाल मेहमान अनुष्का जादौन से भेंटवार्ता, छुट्टियों का सार्थक उपयोग विषय पर। दिन में 1:45 का समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे गौरी खन्ना द्वारा प्रस्तुत गीत और भजन। आज के अतिथि कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता। आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस से बातचीत करेंगे नीरज जैन और इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 का। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद यानी दोपहर 3 बजे आप सुन सकेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन।

कार्यक्रम सुरसंध्या आप सुनिएगा शाम 5:10 पर। युवावाणी कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 5:30 बजे। ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल। विविध क्रम के अंतर्गत आज शाम 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नवीन शर्मा की वार्ता। विषय रहेगा प्रवासी पक्षियों पर आसन्न खतरे। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:30 बजे और रात्रि 8 बजे सुनिएगा गाने नए पुराने। दिल्ली केंद्र से प्रसारित रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज रात्रि 9:30 बजे और रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होगा। तो ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मनस गान का आज का प्रसंग।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में हमारे आज के वार्ताकार हैं डॉक्टर MC अग्रवाल। ये आपको जानकारी दे रहे हैं कंपोस्ट की उपयोगिता विषय पर। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: पौधों का भोजन 20 सरल पदार्थों से बना होता है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति जल एवं वायु से होती है, तथा शेष 17 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट आदि के लिए पौधे भूमि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न फसलों हेतु इन तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक तत्व पौधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे तत्व। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक उपजदायी फसलों के चलन तथा फसल सघनता वृद्धि के कारण इन तत्वों का और अधिक मात्रा में भूमि से दोहन हो रहा है। इससे भूमि में उनकी मात्रा में लगातार कमी होती जाती है। जीवांश खादों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जिनमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जा रही हैं, तथा खेती रसायनिक खादों उर्वरकों जिनमें एक या दो तत्व ही पाए जाते हैं पर आधारित है। फलस्वरूप अन्य पोषक तत्व की भूमि में कमी होती जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन तत्वों के आपसी संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा मनुष्य की तरह मिट्टी भी बीमार हो जाती है, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। पुनः इन उर्वरकों से किसी तत्व की अधिक मात्रा होने पर दूसरे तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए DAP अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जस्ता की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन में जस्ता की कमी के कारण गिरावट आती है। यदि हम भूमि परीक्षण के आंकड़ों का विवेचन करें, उनसे स्पष्ट है कि यहाँ की भूमियों में जीवांश का स्तर 0.02 से लेकर 0.4% के ही बीच है। एक स्वस्थ मिट्टी में जीवांश की मात्रा 0.5% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ की भूमियों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की पहले से ही कमी थी, परंतु पोटेशियम जो कि यहाँ की भूमियों में पर्याप्त मात्रा में था की मात्रा में भी लगातार कमी आ रही है। भूमियों में इसका स्तर उच्च से मध्यम तक आ पहुँचा है। इसी प्रकार धान गेहूँ के खेतों में जस्ता, तिलहन के खेतों में गंधक तथा कहीं कहीं लोहा की भी कमी आ रही है। इस प्रकार उर्वरक आधारित कृषि में अन्य तत्वों के स्तर में कमी आ रही है, जो पोषक तत्व असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। पुनः यदि जीवांश खाद की तरफ दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि अधिकांश गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में हो रहा है तथा मात्र वर्षा के दिनों में ही गोबर खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का अवशेष चारा, फार्म तथा घर के अवशेष पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनकी कंपोस्ट खाद बनाई

जा सकती है। इस प्रकार कंपोस्ट खाद की पोषक तत्वों की पूर्ति तथा पोषक तत्व असंतुलन दूर करने का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। आज के समय कंपोस्ट की क्या उपयोगिता है? उर्वरकों के लगातार प्रयोग से भूमि की जल रोकने की क्षमता में कमी आती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से जमीन की जल रोकने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की वृद्धि जड़ क्षेत्र में उपलब्ध नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार अधिक उत्पादन होना संभव होगा। कंपोस्ट खाद के द्वारा मिट्टी में दानेदार कणी रचना विकसित होती है। ऐसी भूमियों में जल तथा वायु का उचित संचार होने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि में जीवधारियों की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, विशेषकर केंचुए जो मिट्टी में कई गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों की वृद्धि करते हैं। कंपोस्ट खाद में सभी तत्वों की पूर्ति होने से उनका

0: में जीवधारियों की गतिविधियां बढ़ेंगी, विशेषकर केंचुए जो मिट्टी में कई गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों की वृद्धि करते हैं। कंपोस्ट खाद में सभी तत्वों की पूर्ति होने से उनका पारस्परिक असंतुलन दूर होगा तथा मिट्टी की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। उर्वरकों में उपलब्ध नाइट्रेट तथा फास्फेट जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन तथा फास्फेट धीरे धीरे प्राप्त होती है, अतः किसी समय भूमि में इनकी अधिक घुलनशील मात्रा न होने के कारण प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। उर्वरकों के लगातार उपयोग से मृदा प्रतिक्रिया पीएच मान क्षारता की ओर बढ़ रहा है। जीवांशित कंपोस्ट खाद में पीएच में वृद्धि को रोकने का गुण होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता अप्रभावित रहती है। उर्वरकों के लगातार उपयोग से भूमि की भौतिक दशा खराब होती है। कंपोस्ट खाद भूमि की भौतिक दशा को सुधारती है। कंपोस्ट पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के संरक्षण में सहायक है। कंपोस्ट खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं। किसी समय पोषक तत्वों के अधिक मात्रा न होने से रिसाव द्वारा उनकी कम हानि होती है। वर्तमान समय में अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण प्रमुख समस्या है। कंपोस्ट खाद में अवशिष्ट पदार्थों के प्रयोग होने से इनके निस्तारण में भी की भी समस्या नहीं रहती है। अब हम कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत खरपतवार, भूसा, फसलों, डंठल, चारे आदि के अवशेष से कंपोस्ट खाद को तैयार कर सकते हैं। फार्म के अवशेष पदार्थों से कंपोस्ट बनाने के लिए 15 से 20 फीट लंबा, 5 से 6 फीट चौड़ा तथा 3 से 3.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फार्म के एकत्र अवशेष पदार्थ को भली भांति मिलाकर इसकी 1 फीट मोटी परत बिछाई जाती है। इसके ऊपर गोबर तथा पानी का घोल या मिट्टी तथा पानी का घोल छिड़क कर नम बनाया जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से 2 फीट तक न हो जाए। फिर इस ढेर को मिट्टी की एक पतली परत से ढक देते हैं। 3 महीने तक सड़ाने के पश्चात इसको गड्ढे से बाहर निकालकर जमीन के ऊपर एक ढेर के रूप में लगाते हैं। पानी से नम बनाने के बाद मिट्टी की परत से ढक देते हैं। 1 या 2 महीने के बाद खाद प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। कंपोस्ट में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा अवशेष पदार्थों के आधार पर इसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। औसतन इस कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन, 0.15% फॉस्फोरस तथा 0.5% पोटास पाई जाती है।
1: कंपोस्ट की उपयोगिता। इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर M.C. अग्रवाल। कार्यक्रम था खेती की बातें। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता है वहाँ, राष्ट्रभाषा है जहाँ। राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है और वो भाषा है हिंदी। हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। रक्तदान सबसे बड़ा दान जो है एक पुण्य का काम। आपका रक्त दूसरों का जीवन। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर अर्चना राजपूत आपको जानकारी देंगी परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां विषय पर।
1: परिवार नियोजन की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों में स्पेसिंग या अंतर एवं परिवार को सीमित रखने को हम परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे नियोजित परिवार सुखी परिवार या बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारा एक इत्यादि। परिवार नियोजन का तरीका रिवर्सिबल एवं सुरक्षित होना चाहिए। परिवार नियोजन स्त्री तथा पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार से अपनाया जाता है। पहले हम महिलाओं में परिवार नियोजन की विधियों के बारे में बात करेंगे। पहला है इसमें मासिक चक्र के हिसाब से। मासिक धर्म शुरू होने के 10वें दिन से 20वें दिन को हम अनसेफ पीरियड कहते हैं। इस समय में संभोग से गर्भधारण के चांसेस रहते हैं, अतः इस दरमियान संभोग से बचा जाए तो यह परिवार नियोजन का सुरक्षित एवं कारगर उपाय है। दूसरा है स्पर्मिसाइडल या ओविसाइडल क्रीम। संभोग से पूर्व इस क्रीम को इस्तेमाल करते हैं जो शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। तीसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यह हार्मोन आधारित गोलियां होती हैं जो हर रोज एक गोली लेनी पड़ती है, किंतु यह हार्मोन आधारित होने के कारण इनके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं। चौथा है सर्वाइकल डायफ्राम। इसमें डॉक्टर द्वारा गर्भाशय के मुंह पर एक झिल्ली चढ़ा दी जाती है। पांचवा है कॉपर टी। यह 2 से 5 वर्ष तक कार्य करती है, इसे पुनः लगवाया जा सकता है। छठा है डिपॉट इंजेक्शंस। यह लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन इंजेक्शन होते हैं। यह एक बार लगवाने के पश्चात 6 महीने से लेकर 1 साल तक गर्भधारण रोकते हैं। सातवां है ट्यूबेक्टमी या नसबंदी। यह 2 प्रकार से की जाती है, खुले ऑपरेशन द्वारा एवं दूरबीन द्वारा। यह परिवार नियोजन का महिलाओं में सबसे प्रचलित तरीका है। यह सुविधा हर जिला अस्पताल पर निशुल्क उपलब्ध है। आफ्टर पिल्स यह 8वीं प्रक्रिया है। यह एक इमरजेंसी परिवार नियोजन का तरीका है। संभोग के 72 घंटे के अंदर यह पिल्स लेनी पड़ती है। क्योंकि यह हार्मोन आधारित है इसलिए इसके दुष्परिणाम ज्यादा हैं। दूसरा तरीका पुरुषों में परिवार नियोजन का तरीका, पुरुष नसबंदी या वासेक्टमी। आजकल यह नई पद्धति है जिसे NSV यानी नॉन स्केल्पल वासेक्टमी कहते हैं, के द्वारा की जाती है, जिसमें मरीज 2 घंटे बाद घर जा सकता है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है तथा बेहोशी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुरुषों में दूसरा तरीका है कंडोम। पुरुषों में परिवार नियोजन का सबसे प्रचलित तरीका है। यह सबसे आसान, सस्ता एवं बीमारियों से बचाव करने वाला कारगर उपाय है। नियोजित परिवार नियोजित राष्ट्र। यदि आपका परिवार 2 बच्चों का है और आप समझते हैं कि हमारा परिवार पूरा है, तो आपको नसबंदी या ट्यूबेक्टमी का परमानेंट तरीका अपनाना चाहिए। बहुत से महिलाओं में गांव देहात में ये भ्रांतियां हैं कि नसबंदी करवाने के पश्चात हमें कमजोरी आएगी या कुछ कमी आ जाती है या काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। इसलिए अगर परिवार पूरा है तो हमें ट्यूबेक्टमी या नसबंदी का परमानेंट तरीका अपनाना चाहिए।
0: परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रही थी डॉक्टर अर्चना राजपूत। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: संवेद स्वर में आप सुन रहे हैं देश गान आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं

0: मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
1: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव

0: सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रति

0: क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, रोजाना की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं अपने आसपास की गतिविधियों के अलावा कुछ और जानकारियां आज के कार्यक्रम आसपास में। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर। इसके अलावा एक और जानकारी आपको देंगे रजत संक्रांति, जो कि ओडिशा का त्यौहार है, इसके बारे में। रोजाना की तरह आसपास की खबरें आपको बताएंगे, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं देंगे और साथ ही आपको सुनवाएंगे आपके मनोरंजन के लिए गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर एक चर्चा के साथ। सुबह का समय है, आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मन मस्तिष्क बड़ा शांत होता है। तो हम आपको सबसे पहले एक कल्पना देना चाह रहे हैं। कल्पना यानी आपको एक विचार देंगे। आप कल्पना कीजिए एक अस्पताल का आपातकालीन कक्ष, डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही है, एक दुर्घटना में घायल युवक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, उसके परिवार की आंखों में चिंता है, होठों पर प्रार्थना है और दिल में एक ही सवाल, क्या उसे जीवन दान मिल पाएगा, क्या उसे समय पर रक्त मिल पाएगा। और तभी कहीं कोई अनजान व्यक्ति आगे आता है, रक्तदान करता है और उसकी कुछ बूंदें रक्त किसी के जीवन की डूबती हुई आशा को फिर से जगा देती हैं। साथियों, यही है रक्तदान की शक्ति, यही वो निस्वार्थ सेवा है जो किसी इंसान को जीवन का दूसरा अवसर दे सकती है। और साथियों, इसी भावना को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 14 जून को यानी आज के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लाखों रक्तदाताओं को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी स्वार्थ के मानवता की सेवा करते हैं। रक्त यानी खून केवल शरीर में बहने वाला द्रवीय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये जीवन का प्रवाह है। विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है, चमत्कारिक काम किए हैं, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं बन पाया है। इसलिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए किसी दूसरे इंसान का रक्त ही आशा की किरण बनता है। साथियों, आए दिन हमारे आसपास दुर्घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन देखने और सुनने को मिलते हैं, महिलाओं को प्रसव के दौरान बहुत जटिलताएं आती हैं, थैलेसीमिया, कैंसर और बहुत सी गंभीर बीमारियां होती हैं, और इन सब में आवश्यकता पड़ती है रक्त की, खून की यानी ब्लड की। ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह सामने आता है।

और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति अक्सर उस मरीज को जानता तक नहीं जिसकी जान बच रही होती है। देखिए ना, ना कोई पहचान, ना कोई संबंध, ना कोई अपेक्षा, सिर्फ मानवता का रिश्ता। साथियों, दुर्भाग्य से आज भी बहुत से लोग रक्तदान को लेकर भ्रम में रहते हैं। उन्हें लगता है कि रक्तदान से कमजोरी आ जाएगी या स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जबकि सच ये है कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। शरीर कुछ ही दिनों में रक्त की कमी की पूर्ति कर देता है और विशेषज्ञों की निगरानी में ये प्रक्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक और सुरक्षित होती है। साथियों, किसी भूखे को भोजन देना पुण्य है, किसी प्यासे को पानी देना सेवा है, लेकिन किसी को जीवन देना बहुत बड़ा उपकार है उस पर और उसके परिवार पर। रक्तदान उसी उपकार का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली माध्यम है। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर आइए हम स्वयं से एक प्रश्न पूछें। क्या हमारे कुछ मिनट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? मिनट, अभी बताते हैं कैसे। यदि उत्तर हाँ में है तो हमें रक्तदान के प्रति जागरूक होना और अपना कुछ समय देकर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना। अवसर मिलने पर इस महादान में सहभागी भी बन सकते हैं। साथियों, याद रखिए, रक्त की हर बूंद में धड़कती है किसी की उम्मीद। रक्तदान का हर निर्णय लिखता है किसी जीवन की नई कहानी। ये संदेश है और इसके साथ मैं आपसे एक संकल्प भी लेना चाहूंगी। आइए संकल्प लें, हम रक्तदान करेंगे, जीवन बचाएंगे और मानवता की इस अमूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा उपहार जिसकी कीमत नहीं केवल महत्व होता है। किसी

इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आसपास में। और अब चलते हैं अपने आसपास की सूचनाओं की ओर। तो साथियों, ये है पहली सूचना। ये एक जानकारी है, 15 जून तक जमा करें अग्रिम कर की पहली किश्त, छूट पर देना होगा ब्याज। जी हाँ साथियों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर यानी एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून तक जमा करनी होगी। सभी कर योग्य आय इस व्यवस्था के दायरे में आती है। यदि चालू वित्तीय वर्ष में टीडीएस और टीडीएस समायोजन के बाद अनुमानित आयकर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक बनती है तो करदाता को अग्रिम कर जमा कराना होगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है अग्रिम कर जमा करने से मुक्त हैं। टैक्स ऑडिट के दायरे वाली कंपनियों को कर ऑनलाइन जमा करना होगा। पहली किस्त में कुल अनुमानित कर का 15% जमा किया जाएगा। समय पर निर्धारित राशि जमा न करने पर आयकर कानून के तहत 1% प्रतिमाह ब्याज देना पड़ सकता है। तो साथियों, यदि आप करदाता हैं, कर के दायरे में आ रहे हैं, तो 15 जून तक पहली किस्त जमा कराना सुनिश्चित करें और ब्याज से बचें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आज, रहेगा कड़ा पहरा। राजकीय इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जिले में रविवार को यानी आज किया जा रहा है। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 10,803 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए इस परीक्षा को तैयारी कर ली गई है। परीक्षा के संचालन के लिए 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकारी केंद्रों पर सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर नजर रखेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय का बीए, बीएससी, बीकॉम और षष्ठम सेमेस्टर का परिणाम घोषित। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को बीए, बीएससी, बीकॉम षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। जिन कॉलेजों ने प्रायोगात्मक परीक्षा के अंक ऑनलाइन दर्ज नहीं किए हैं, उनका परिणाम रोक दिया गया है। कॉलेजों को प्रायोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज करने के लिए 20 जून तक का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम और एमए, एमएससी, एमकॉम द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 23 मई को समाप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून के प्रथम सप्ताह में परिणाम घोषित कर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक दीक्षा समारोह आयोजित करने के लिए स्नातक की परीक्षा ओएमआर पर कराई थी। मूल्यांकन पूरा हो चुका है। कॉलेजों ने प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज नहीं किए हैं, इस कारण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा था। नीट यूजी पुनर्परीक्षा में रिवीजन से ही मिलेगी सफलता। जी हाँ, ये एक जानकारी देते हैं आपको। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा मेडिकल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। परीक्षा में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में आगरा के अभ्यर्थियों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दिनों में नई चीजें पढ़ने की बजाय पहले से तैयार विषयों का रिवीजन और आत्मविश्वास बनाए रखना ही इस परीक्षा में सफलता दिलाएगा। अगली खबर 22 जून से होंगी। विश्वविद्यालय की एलएलबी व बीएएलएलबी

0: की प्रायोगिक परीक्षाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी विधि महाविद्यालय में संचालित LLB प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा BA LLB तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 22 जून से शुरू होंगी। ये जानकारी विधि प्रायोगात्मक परीक्षा समिति के सदस्य एवं विधि संकाय के अधिष्ठाता ने दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षाएं 20 जून को समाप्त होंगी। इसके बाद 22 जून से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। अगली खबर, यदि आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है या उसमें कुछ संशोधन बाकी है तो जान लीजिए कि अब रविवार को भी प्रधान डाकघर में बनेंगे आधार कार्ड। नया आधार कार्ड यदि बनवाना हो या फिर कोई संशोधन करवाना हो, अब ये कार्य रविवार को प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में करवा सकेंगे। ये नई व्यवस्था रविवार से ही लागू होगी और इसके लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। लोगों की भीड़ को देखते हुए काउंटर की संख्या को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। वहीं मुख्य डाकघर में सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। जिले में वर्तमान में 25 आधार मशीनों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने से वंचित हैं, वहां विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। यदि किसी स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, संस्था या अन्य स्थान पर 60 या इससे अधिक संख्या के लोगों को आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने की आवश्यकता है तो संबंधित संस्था को कम से कम 1 सप्ताह पूर्व प्रधान डाकघर को सूचित करना होगा। सूचना मिलने के बाद डाक विभाग आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित स्थान पर विशेष आधार शिविर आयोजित करेगा। अगली खबर है खेरिया ईदगाह आरओबी की। जाम की समस्या को देखते हुए खेरिया ईदगाह को जोड़ने के लिए नया रेल ओवर ब्रिज यानी आरओबी बनेगा। नई दिल्ली आगरा रेल लाइन पर आरओबी 4 लेन का होगा। इसके दोनों तरफ 1 से 1.5 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इससे पैदल यात्रियों को पुल पार करने में आसानी रहेगी। नया आरओबी 56 साल पुराने आरओबी के पास बनेगा। डीएम की मौजूदगी में भूमि चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही रेलवे द्वारा इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जाएगी। इसमें सेतु निगम के अधिकारी भी सहयोग करेंगे। बताना चाहेंगे कि खेरिया ईदगाह आरओबी 56 साल पुराना है। हर दिन 1.5 लाख से अधिक वाहन इस पर गुजरते हैं। 3 साल पूर्व आरओबी की मरम्मत हो चुकी है। 1 जून से फिर से गर्डर की मरम्मत शुरू हुई है। इसके चलते भारी वाहनों के प्रवेश पर 90 दिनों के लिए रोक भी है। 30 नवंबर तक खेरिया एयरपोर्ट का नया सिविल एनक्लेव बनकर तैयार हो जाएगा। ताजनगरी में शुक्रवार देर रात तूफान के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। रात से शनिवार तड़के तक 19 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम है। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। शहर में बारिश का ट्रेंड भी बदल रहा है। पिछले 3 दिनों से दोपहर या शाम के बजाय देर रात बारिश हो रही है। शुक्रवार रात करीब 1:20 पर शुरू हुई बारिश बाद में तूफानी रूप ले गई। तड़के तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके असर से अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 8.3 डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस रहा। नम हवाओं ने दिन और रात दोनों समय लोगों को राहत पहुंचाई। मौसम विभाग के अनुसार 15, 18 और 19 जून को बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी या बौछार पड़ सकती है। अन्य दिनों में आसमान साफ रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना है। तो ये थी हमारे आसपास की खबरें। अभी हम आपसे एक और चर्चा करेंगे, एक और जानकारी आपको देंगे, गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में भी सूचनाएं देंगे। लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर ले।

0: रेल में फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
1: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, अब एक और चर्चा, एक और जानकारी की बात आपसे करते हैं। आप और हम सभी इस बात पर गर्व भी महसूस करते हैं कि भारत, हमारा देश, विविधताओं का देश है। यहाँ हर प्रदेश की अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं और अपने विशिष्ट त्योहार हैं, और ऐसा ही एक अनोखा और अत्यंत रोचक पर्व है रजस संक्रांति, जिसे विशेष रूप से उड़ीसा में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। साथियों, रजस संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और नारी शक्ति के सम्मान का उत्सव है। ओडिशा की लोक मान्यता के अनुसार इस अवधि में धरती माता

साथियों, रजस संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति और नारी शक्ति के सम्मान का उत्सव है। ओडिशा की लोक मान्यता के अनुसार इस अवधि में धरती माता रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार एक स्त्री सृजन की आधारशिला है, उसी प्रकार धरती भी समस्त जीवन की जननी है। इसलिए इन दिनों धरती को विश्राम दिया जाता है और खेतीबाड़ी या भूमि की खुदाई जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। आमतौर पर यह पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों गांवों और शहरों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, पारंपरिक खेल खेले जाते हैं और घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। विशेष रूप से युवतियां नए वस्त्र पहनती हैं, सजती संवरती हैं और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व का आनंद लेती हैं। रजस संक्रांति का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि समाज में महिलाओं के सम्मान और उनके स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सृजन और जीवन का आधार केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि नारी शक्ति भी है और दोनों का सम्मान करना हमारी संस्कृति की पहचान है। आज जब आधुनिकता की दौड़ में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, तब रजस संक्रांति हमें धरती के साथ अपने गहरे संबंध की याद दिलाती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति को भी विश्राम चाहिए, संरक्षण चाहिए और सम्मान चाहिए। तो आइए इस त्योहार के अवसर पर हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें और नारी सम्मान के मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को रजस संक्रांति की हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम आसपास में आइए अब आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। यह पहली सूचना जो हमें प्राप्त हुई है क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मैनपुरी से। ये सूचना है श्रीमती माधुरी के विषय में। माधुरी पुत्री कायम सिंह निवासी छोटी नगरिया थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी दिनांक 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। माधुरी की उम्र लगभग 33 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ है और दोहरा मजबूत जिस्म है। इनका चेहरा गोल है। घटना के दिन इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। ये अपने साथ एक मोबाइल लेकर भी गई हैं। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको प्राप्त हो तो कृपया क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मैनपुरी को सूचित करें। थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी से प्राप्त ये अगली सूचना है श्रीमती बेबी के विषय में। श्रीमती बेबी पत्नी रंजीत निवासी नगला बेटा थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी दिनांक 2 मई 2026 से लापता हैं। बेबी की उम्र लगभग 40 वर्ष है। इनका कद 5 फुट और रंग गोरा है। घटना के दिन इन्होंने मेहरून रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी को सूचित करें।

0: थाना प्रभारी थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी से प्राप्त यह अगली सूचना है श्रीमती मानसी के विषय में। श्रीमती मानसी पत्नी रवि निवासी विशनपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी दिनांक 10 मई 2026 की सुबह से लापता है। मानसी की उम्र लगभग 25 वर्ष है। इनका कद 5 फुट रंग गोरा है। घटना के दिन इन्होंने जींस टॉप पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी को सूचित करें। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। इसके साथ ही आज का आसपास कार्यक्रम समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम आसपास। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर

0: विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: क्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
7: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैच

0: की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. and an ICC

0: इसके फौरन बाद सभी के लिए अब नए हुरमुस को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक कयादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीग्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस डेस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निजाम को उजागर किया जाएगा जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा टेक्नोलॉजी तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक्किद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की सप्लाई चेन्स मस्नूई जहानत सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह

0: ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फायदा पहुंच सके। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के GST निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगु करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शोबों में मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहदा तवक्कोआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ

0: से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून हत्या करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून हत्या करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि हत्या किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी जरूरतमंद को सेहतयाब करने और एक खानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं, जिम्मेदाराना तौर पर खून हत्या करें और कीमती जानों को बचाएं में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई कुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादले ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल जरूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। मुआहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिर पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा के प्रातःकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है SD बर्मन ने और फिल्म का नाम है 3 देवियां।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना तीन देवियां फिल्म का गीत। कार्यक्रम के अगले गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने। ओपी नगर के संगीत से सजे इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और फिल्म का नाम है फिर वो ही दिल लाया हूँ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीत के बोल राजा मेहंदी अली खान ने लिखे हैं, धुन बनाई है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

की परछाइयां। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है जानवर फिल्म से। मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत बद किया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफी का गाया गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जानवर। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजीद सुल्तानपुरी की लिखी गीत रचना, जिसे संगीत से सजाया है नौशाद ने और फिल्म का नाम है साथी।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

इस गीत के साथ ही आज का गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आरपी सिंह जी, सर आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक

0: के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
1: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थ्रेटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
0: बिल्कुल सर, अनुपम सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है, और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
0: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया है?
1: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है, जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नब तीनों जगह से मारक क्षमता वाली मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के

0: कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया हेलीकॉप्टर बनाया गया वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर है जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ मिलकर के एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हो, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के, इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उसे जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही
1: है, हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
0: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
0: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। सुबह के 9:25 और 50 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ की पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज में।

ये रात फिर ना आएगी। ये था फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे S.H. बिहारी ने और धुन बनाई थी O.P. नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है नौनिहाल फिल्म से।

आपने सुना मद रफी की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई थी मदन मोहन ने। फिल्म का नाम था नौनिहाल। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मल्हार फिल्म से। गीत इंदिवर का है और संगीत रोशन का।

ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ देंगे मोहम्मद रफी। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, जिसको संगीतबद्ध किया है चित्र।

काली टोपी लाल रुमाल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है दो आंखें बारह हाथ फिल्म से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। पंडित भरत व्यास के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है वसंत देसाई ने।

लता मंगेशकर के गाए दो आंखें बारह हाथ फिल्म के इस गीत के साथ ही गीत मंजिशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं सत्य प्रकाश शुक्ला। आप प्रस्तुत करेंगे कुछ ब्रज लोक गीत। यह है पहली प्रस्तुति।

मन्ने जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। इस प्रश्लोक गीत के बाद आइए सुनते हैं अगली लोक रचना, जिसके बोल हैं कहे ब्रस भान किशोरी

0: गिर गिर आए घनश्याम री, घनश्याम न मेरे आए। इस लोक रचना के साथ ही आज का लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10 बज चुके हैं, समय हुआ है कार्यक्रम सुरसरिता का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्म संगीत। यह है पहली प्रस्तुति मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आपने सुना कर्ज फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था, जिसे संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए एक बार फिर सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। गीत में आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं और फिल्म का नाम है महबूब की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं प्रेम रोग फिल्म से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
1: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुर सरिता कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

आपने सुना किशोर कुमार को, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत राजेश रोशन का। फिल्म का नाम था जोली। इस गीत के साथ ही आज का सुरसरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1523 किलोहर्ट्ज़ पर। रक्तदान सबसे बड़ा दान, जो है एक पुण्य का काम। आपका रक्त दूसरों का जीवन। रक्त की हर बूंद में धड़कती है किसी की उम्मीद। रक्तदान का हर निर्णय लिखता है किसी जीवन की नई कहानी। रक्तदान एक ऐसा उपहार है जिसकी कीमत नहीं, केवल महत्व होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अमीर खान द्वारा प्रस्तुत राग तोड़ी और विदुषी सविता देवी द्वारा प्रस्तुत राग नटभैरव। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं राग तोड़ी। कलाकार हैं उस्ताद अमीर खान।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमीर खां से गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग तोड़ी। आइए अब सुनते हैं विदुषी सविता देवी से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग नट भैरव।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी सविता देवी से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग नट भैरव। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का
1: आगरा। नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में, हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
2: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के

0: बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
1: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
0: जी।
1: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है, करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही हैं, और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है, और ये केरल से लेकर जम्मू तक
0: जी
1: कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है
0: जी
1: उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है
0: जी
1: डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर, और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन $57 मिलियन का ये हमारे यहाँ से जाता है, ये ताजा फलों के रूप में जाता है, और इसमें जो इसके पल्प हैं और भी अन्य उत्पाद हैं वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस
0: जी
1: तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही, हमारे हर एक राज्य में चाहे वो जगती क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है, और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं कुछ पिछेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं, तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुत्फ उठा पाते हैं। और यहाँ हमारे देश जो है, मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं।
0: जी मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी, आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में, वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
2: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया
0: जी,
2: और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया, देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती
0: जी।
2: है, और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है, बड़े क्षेत्रों में होती है, दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई
0: जी।
2: और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं, और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को, आम्रपाली मल्लिका को, तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है, और इसके फल बड़ी गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारा उपभोक्ता है, वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का, चाहे वो लंगड़ा में हो, दशहरी में हो, या बॉम्बे ग्रीन में हो, नीलम में, वो बना रहे
0: जी।
2: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, और दो अच्छे गुण मिलकर और अच्छा गुण हो जाए, कि मिठास भी बहुत अच्छी हो, आकार बड़ा हो जाए, और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है। और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं, जैसे पूसा अरुणिमा है, पूसा लालिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, अर्का उदया है, अर्का सुप्रभात है, ये सब संकर किस्में हैं, और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही, इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है, जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है, निर्यात के लिए जाना है, तो ऐसी किस्में चाहिए, और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है, और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
0: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं जी। तो अवनीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
3: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं
0: जी।
3: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया कि जैसे हम लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं, हम परंपरागत खेती करते हैं, इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं
0: जी। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के, ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है, किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
1: जैसा कि मैंने बताया करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं, और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के, जो आपने सुना होगा जो दरभंगा में जो

0: लकी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है, जहां पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था, कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए, तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहां पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं। और जिस तरह के जो इसमें बनता गया, इसमें प्लस्ट्री कहते हैं, चांद सिडलिंग कहते हैं, जिसमें उस समय के उसको शेप साइज कलर और उसके सुगंध, और जैसे इन्होंने कहा राम केला, ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है। दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, हिमसागर है, ये सारी जो है टेबल पर्पस जो खाने के लिए ताजे बन। इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है, तोतापुरी है, बादामी है, हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है, ताजे खाने के लिए भी है। और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है, ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं, जहां 8 दिन 10 दिन 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद। तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें, बिम्स्टेक कंट्री की बात करें, तो यहां ये जाते हैं जहां हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको, लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन कंट्री या यूएसए हो, तो यहां उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ता है, और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है, अपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है, अपेडा कहते हैं, और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है, उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है, आपको किस तरह की खाद पानी कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, फिर वो ग्रेड करते हैं, फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं, जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है, एक पूरी प्रोटोकॉल होती है, फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है, उनको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन, विभिन्न बाजारों के लिए, जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा, जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर में बनाई जाती है। और यहां जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है, ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है, तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग होती है, और इसकी पूरी कोल्ड चेन है, दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से, वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी, और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं।
1: जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
0: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है, पूसा संस्थान है, लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में है, जो आमों पे कार्य करता है, क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके आधार पर कितनी खाद देनी है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है, कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें, और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रायः जो है अपेडा इन्हीं हमसे लेता है, और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, रत्नागिरी का हो, चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में, वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं, सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो। और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, वो हमें भी बताते हैं, उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं, मलियाबाद है, बनारस है, भागलपुर है, तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है, तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उनकी सॉइल की जांच होती है, सारी चीजें जब हो जाती हैं तब अपेटा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो आते हैं, उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगी के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया जिसमें डिसैपिंग है, उसको क्लीनिंग है, उसको डिप करना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट है,

0: उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर हीट ट्रीटमेंट जो है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, यही रिडक्शन वो कराते हैं। फिर हर एक देश के हिसाब से उनकी डब्बा का जो कहते हैं, कोई 2.5 किलो का होता है, कोई 5 किलो का है, कोई 6.5 किलो का है, उस तरह से उनकी पैकेजिंग होती है, एक स्टैंडर्ड होता है वो। वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन, अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना, हम शिप से नहीं भेज पाएंगे, हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा, सड़ जाएगा। तो वहां जो वायु मार्ग से जुड़ जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं, जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे और 2 दिन के बाद, जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए। और किसानों को मैं बताऊं, इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसी वजह से हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है, कीमतें भी बढ़ी हुई हैं, किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है, लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, दुबई, ओमान, दोहा, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनको जा रही थी, वहां अब इस युद्ध के कारण जो चल रहा है करंट सिचुएशन, उसमें नहीं जा पा रहा है, तो हमें नए बाजार देखने होंगे। अब हमें हमारे नेबरिंग कंट्री है, या बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है, जहां एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं। और सिंगापुर, हांगकांग, ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है, और ये मैं कहूं कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया।
1: जी, बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और भी कई प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अपनी पसंद का कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
0: मैं तो कहूंगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो कुछ अगर गाना बता सकते हैं।
2: आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं कि देश को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो ये गाना आया हुआ था 80s-90s के बीच में, नाम फिल्म का है, पंकज उदास जी की आवाज में है। उस गाने से उस दौर में और बाद के दौर में बहुत से लोग ने प्रेरणा लेके विदेशों से अपने आप को देश में शिफ्ट किया और अच्छे से यहाँ पर अपना व्यवसाय या जो भी कार्य क्षेत्र था उस क्षेत्र में आगे गए। उस गाने के बोल हैं कि चिट्ठी
1: आई है,
2: वतन की चिट्ठी आई है। ये गाना आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा।
1: बहुत ही प्यारा सा गाना है, हम यही गाना सुनवा रहे हैं।

0: आम के नामकरण की कि इतनी सारी किस्में हैं उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
1: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
0: जी,
1: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
0: जी।
1: और ना तो नीलम को देखें तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
0: जी।
1: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
0: जी।
1: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है और उसमें अभी भी हर साल फल आता है, तो सबसे अच्छी। अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता था हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह देगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं, 4x4 मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
0: जी।
1: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं जैसे हिमसागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिमसागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
0: जी,
1: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
0: जी,
1: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
0: जी,
1: तो वो जो उसका देखें तो करेक्टर है,
0: गुण हो गया।
1: हाँ, तो जो नाम जो है नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है
0: जी।
1: जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है कि सारे फलों में सबसे बड़ा है, तो ये मल्लिका जैसा है
0: जी।
1: तो इस तरह से मतलब गुण का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुण है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो, और नाम सुविधाजनक भी हो जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
0: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों सब्जियों फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
1: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए
0: जी,
1: अगर आपने मैंजीफेरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
0: जी,
1: लेकिन अगर आप हापुस बोलेंगे, जितने बाजार में जाएंगे अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
0: जी,
1: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है स्टैंडर्ड लिटरेचर है वहां ये अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं अगला किसी और नाम से बुलाएं, बेसिक हो जाए
0: जी। डॉक्टर जयप्रकाश ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
1: निश्चित रूप से आजकल देखें तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों, ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा, और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, 3 तो बीमारियां आ गई, उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया।

0: और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफॉर्म। जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होकर ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है। तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये तीन बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है, उसके बाद तीन चार दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरेसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे दया के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
1: जी।
0: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। और जो MIDH है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें। हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है, जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
1: जी।
0: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
1: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे जाता है उसमें?
2: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो है ये फसल कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
1: जी,
2: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया, लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है। बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती
1: है।
2: उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवंबर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं उसे मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हाथ से, जिससे कि ये फरवरी का महीना होगा, फरवरी में उस पर अच्छी तरह से फल आ सके
1: जी।
2: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक के हमें दवाइयों का ये प्रयोग करना पड़ता है, और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है, तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं, वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं, ये चलता रहता है हमारा।
1: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
2: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही हैं, इनको भी हम लगा रखे हैं हमने, ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी। इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
1: जी। पहले बारिश का या सर्दी का, गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता, और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
2: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं, सरकार ने बनाए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
1: जी।
2: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है तो हम अपनी फसल की आज तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
2: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। और भी सवाल हैं आपसे जानना चाहूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना।
2: गाना तो मैं जो है किसान आदमी हूँ, तो किसान भाई छोटा सा ही गाना है कि चल चमेली बाग में, वो वाला गाना
1: जी ठीक है।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, श्री अवनीश कुमार त्यागी। हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में आम की क्या भूमिका है और हमारी रसोई में जो आम पहुंचता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है किसान की। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
1: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, और जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहां हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जाकर के वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहां सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट में भी माल उठ जाता है।
0: जी, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं, और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है।
0: जी, मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो है वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी

0: लगातार करते रहना पड़ता है। तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती हैं और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
1: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान है, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, जाके वहाँ पे एग्रीस्टेट में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतने आम के खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहाँ जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमा है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर पाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धति को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी न बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे, और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर है या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है, ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा, और करीब ये 18 साल तक के लिए प्रश्न मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले, एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं, तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो ऐसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले, और विदेशी बाजार में उसकी विशेष मांग रहती है, तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असमय बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं कि एक किसी जैसे दशहरी पे निर्भर ना, उसे जब लगाना हो जैसे कि इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये 4 से 5 किस्मों का समूह लगाते हैं, इसमें होता क्या है कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पेशाती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है, और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की 2-3 किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
0: जी।
1: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्राय किस्म हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है, तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान अब आगे बढ़ रहा है, उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी हमें इसे आगे बढ़ाना है, और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ अब हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए, और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है, और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
0: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
1: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से आता है, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, केसर है।

0: बैगन पल्ली है, तोता परी है, ये इत्यादि जाति हैं, इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है जो वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन है, वो मध्यम मिठास चाहिए, वो खटास भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है, ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी, जो नेक्स्ट जनरेशन आम है, जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे। देसी किस्मों को तो हम खाएंगे ही, हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं, उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और एक दो वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे और उनको देखेंगे, इस तरह से होता है।
1: जी, बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना आपसे पूछना चाहूंगी।
0: मैं तो चाहूंगा मेरा देश रंगीला जो ये गीत है वो जरूर बजवाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं, जिन्हें उन्हें भी अच्छा लगे।
1: जी बिल्कुल।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
1: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर, इनके अलग अलग डायरेक्टरेट हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है। जो आम बहुत छोटा सा होता है, जैसे हम टिकोरा कहते हैं, टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता है, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है। उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था। परंपरागत रूप से गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते हैं, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय, वो कच्चे आम का ही होता है और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पर जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया जाता है। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही हैं और किस्में आई हैं। जैसे मैंने कहा कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75 से 80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट, मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से व्यवहार कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति या परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए, अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है। लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: जी, यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा,
1: निश्चित रूप।
0: जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की जो लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
1: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं, उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए। इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई

0: में उपलब्ध कराते हैं और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है, जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं। और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें ऑफकोर्स कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है। और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया, उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं।
1: जी, मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूँ कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे? क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है? इसलिए
2: देखिए, जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे, उससे फल को नुकसान नहीं होता था। अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है। इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
2: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते ज्यादा,
1: जी वो करने पड़ते हैं,
2: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
2: सही तरीका है कि जब पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना है, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है।
1: जी, और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है, कुछ है, वो भी धुल जाएगा,
2: वो भी सब धुल जाता है।
1: जी, डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है, तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे, अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल्ड कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर

0: खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में कर रहे हो, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पर आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में, कि वहां के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत है, आईटी के बच्चे हैं, एमबीए के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसका उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूं कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी,
0: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्थ हमारे जो जनपद है वहां तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहां के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहां किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूं कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा
1: जी। चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
0: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाया और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो, तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्त्रक्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है, फिर उत्पाद बनता है। आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, क्यूआर कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है, तो उसे भी अब एआई और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं, किसी में अगर कोई अवगुण है या उसमें कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इंफेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज है, बायो सेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं या खाने योग्य नहीं, इसको आप फेंक सकते हैं। तो जो भी एआई है, जो हमारा जो सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस तरह से सारी चीजें फार्म से लेकर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तक हम डिजिटाइज करके इस पूरे टेक्निक ड्रिवन इस पूरी इंडस्ट्री को कर सकते हैं, और ये क्षमता है, और हमारे कई युवा जो हैं इसमें सारे स्पेशलाइज्ड हैं, और सभी को एक साथ आना है। मैं सभी को कृषक बनने को नहीं कहता हूं, लेकिन कृषक बनने के साथ इस पूरे वैल्यू चेन में आप स्टेक होल्डर बनिए और एक दूसरे को हेल्प करिए और सहयोग करिए, और ये इंडस्ट्री फलेगा फूलेगा
1: जी। और ज्यादा से ज्यादा युवा अगर जुड़ेंगे नई तकनीक के साथ तो इसमें भी आधुनिकता आएगी।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं, और हमने इस इंडस्ट्री को भी अच्छे से जाना आज आपके माध्यम से। डॉक्टर संजय कुमार सिंह, उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए, और श्री अवनीश कुमार त्यागी, नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं, गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए, जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए, अपने आप को अपडेटेड रखिए, साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए, तो आपको आम के आम, गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद। तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमका

0: करता रहे, इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूं। कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज लोकगीत। कलाकार हैं रामदास बालक चटपट और साथी हैं सतीश, विनोद, शिव गणेश, श्री निवास। तो आइए सुनते हैं इन सभी की आवाजों में ये ब्रज लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज लोकगीत। कलाकार हैं रामदास बालक चटपट और साथी हैं सतीश, विनोद, शिव गणेश, श्री निवास। तो आइए सुनते हैं इन सभी की आवाजों में ये अगला ब्रज लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज लोकगीत। कलाकार थे रामदास बालक चटपट और साथी थे सतीश, विनोद, शिव गणेश, श्री निवास। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में लव आजकल फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत रचना है प्रीतम की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे लव आजकल फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से। आवाज है केके की, शब्द रचना है कौसर मुनीर की, संगीत रचना है प्रीतम की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं मीत ब्रदर्स और यासिर देसाई की आवाजों में फिल्म शिमला मिर्च से।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म शिमला मिर्च का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म सुपर 30 का ये गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की मधुर आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं अजय अतुल।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सुपर 30 फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म ऑलवेज कभी कभी से, शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपने खूबसूरत संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ऑलवेज कभी कभी का ये गीत। आइए अब सुनते हैं यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की मधुर आवाजों में फिल्म उरी का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने, संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेव ने।

0: रूसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे उरी फिल्म का ये गीत। आवाजें थी यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले जिक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए।

0: हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्नों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल।

जय हिंद प्यारे बच्चों। दिन रविवार हो तो हमारे बच्चों को इंतजार रहता है अपने पसंदीदा कार्यक्रम बालमंडल का। तो आज बालमंडल में आपके साथ है आपकी ललित दीदी। बच्चों, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली रहे, हमारे पास कोई कष्ट कभी ना आए, हम स्वस्थ रहें। लेकिन फिर भी कई बार हम स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी बीमारियों से जकड़ जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मरीज की हालत इतनी खराब होती है कि उसे ब्लड की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। बच्चों, किसी दुर्घटना, बड़ी सर्जरी या गंभीर बीमारियों में मरीजों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे समय में रक्त देने वालों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनमें शक्ति होती है, उत्साह होता है और कुछ करने का जज्बा होता है। यदि युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी से मरने वाले मरीजों की संख्या बहुत हद तक कम की जा सकती है। बच्चों, 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ बच्चा रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर कुछ ही समय में नए रक्त का निर्माण कर लेता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में नई उम्मीद और नई मुस्कान ला सकता है। तो बच्चों, आप भी रक्तदान करके किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। बच्चों, आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं घूमने की योजना बना रहे होंगे या फिर घूमकर आ गए होंगे। बच्चों, हमारे देश में इतनी खूबसूरती है कि जब तक हम इसे देख नहीं लेते तो हमें इसकी खूबसूरती का पता चल ही नहीं पाता। इसलिए कुछ वक्त निकालिए घूमने और अपने देश को पहचानने के लिए।

0: बच्चों, पुरस्कार प्राप्त करना किसे पसंद नहीं होता, उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन पुरस्कार सभी को पसंद आते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास हुनर और उस हुनर को दर्शाने का जज्बा होना चाहिए। आज हम अनुष्का जादौन से बात कर रहे हैं बुकर प्राइज पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बच्ची। तो सबसे पहले हम इस बच्ची का नाम जान लेते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
1: अनुष्का।

0: अच्छा, कैसी हो?
1: अच्छी हूँ दीदी। आपको किताबें पढ़ना कैसा लगता है?
0: अच्छा भाई, आते आते प्रश्न, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों बेटा?
1: क्योंकि मैं आपसे किताबों की दुनिया से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
0: अच्छा जी, तो पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हो आप हमसे?
1: तो बताइए कि क्या आपको बुकर प्राइज के बारे में पता है?
0: अरे क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पता होगा, हम तो सब जानते हैं। मगर बेटा, हम ये चाहते हैं कि आप यदि इसके विषय में जानते हो तो और बच्चों को भी इस बुकर प्राइज के विषय में जानकारी होनी चाहिए, है ना? तो कुछ बताओ कि इनके विषय में, बुकर प्राइज के विषय में हमारे बच्चों को।
1: बिल्कुल दीदी, मैं अपने साथियों को इसकी पूरी जानकारी देती हूँ। बुकर प्राइज किताबों की दुनिया का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी।
0: अच्छा,
1: ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छी और प्रभावशाली किताबें लिखी हो।
0: अरे वानुष्का, तुमने बिल्कुल सही बताया। अब अपने साथियों को ये भी बताओ कि कोई एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है क्या इसको मिलने का? भाई बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए ना।
1: हाँ दीदी बिल्कुल। पहले ये प्राइस सिर्फ बड़े लोगों को दिया जाता था, लेकिन अभी इतना बड़ा प्राइस हम बच्चे भी जीत सकते हैं।
0: अच्छा।
1: बुकर प्राइस फाउंडेशन ने 23 अक्टूबर 2025 को अपने अनाउंसमेंट में बताया कि अब 8 to 12 ईयर के बच्चों की किताबों को भी ये चिल्ड्रन बुकर प्राइस 2027 से दिया जाएगा।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा।
1: और दीदी, जीतने वालों को £50,000 होगी।
0: बहुत अच्छे बच्चे, ये तो तुमने बुकर प्राइज की बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे बच्चों को। अब जरा इन्हें ये भी बताओ कि प्राइज को किससे देना है, ये डिसाइड कौन करेगा? भाई ये प्राइज मिलना है किसे, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको दिया जाना चाहिए?
1: ये डिसाइड करने के लिए पैनल होता है,
0: अच्छा।
1: और ये जो चिल्ड्रन बुकर प्राइज दिया जा रहा है, इसकी खासियत ये भी है, इसके पैनल में तीन बड़े लोगों के साथ तीन बच्चे भी शामिल
0: अरे
1: होंगे।
0: वाह।
1: और जीतने वाली किताबों की 30,000 कॉपीज प्राइस के रूप में बांटी जाएंगी।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है ये बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, है ना? क्योंकि बुक्स तो बच्चों से लेकर बड़ों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, और ऐसा ही नहीं है कि बड़े ही पुस्तकें लिखते हैं, बच्चे भी बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, है ना?
1: हाँ दीदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुक्स हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं, सोचने समझने और विचार लिखने की शक्ति भी देती हैं।
0: बहुत सारी जानकारी है हमारी छोटी सी अनुष्का को।
1: हम जब किताबें पढ़ते हैं तो कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे हैरी पॉटर सीरीज ने लाखों बच्चों को जादू की दुनिया में ले जाकर
0: हैरी
1: उन्हें
0: पॉटर की बात तो तुमने बहुत सही कही, बच्चे दीवाने हैं उसके, है ना?
1: इसलिए कुल मिलाकर कहे तो पुस्तकें जीवन का आधार है, और बिना इनके दुनिया अधूरी है।
0: अनुष्का, तुम तो बहुत सारी चीजें जानती हो किताबों के महत्व के बारे में, और तुमने किताबों के महत्व के बारे में हमारे बच्चों को भी जानकारी दी। क्या तुम्हें खुद भी मतलब किताबें पढ़ने का शौक है? मतलब खुद किताबें पढ़ती हो तुम?
1: हाँ दीदी, किताबें पढ़ना तो मुझे भी बहुत पसंद
0: लग
1: है।
0: रहा है मुझे।
1: और जब से ये खबर सुनी कि बच्चे भी अब अपनी किताब लिखने की कला के लिए इतना बड़ा प्राइज जीत सकते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ।
0: अच्छा बिल्कुल अनुष्का, और आज के समय में जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल और टीवी पर बिताते हैं, है ना, देखते हैं ना हम कि बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। स्कूल से आते हैं बस मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, खाना खाते हैं तो मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं, है ना? तो तब पुस्तकों की ओर उनका ध्यान खींचना ऐसे समय में बहुत बहुत जरूरी है।
1: हाँ दीदी, हम बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और इसलिए उनका मोबाइल से कम और किताबों से अधिक जुड़ना देश के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बुकर प्राइज केवल एक प्राइज नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने का एक माध्यम है। अगर हम बच्चे को किताब देंगे तो वह अपने ज्ञान से इस दुनिया को और अच्छा बनाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा अनुष्का तुमने, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करें, है ना? तुम तो पढ़ती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें और बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी किताबें बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार डालती है ना, उन्हें संस्कारवान बनाती है। इसलिए किताबों को पढ़ना एक अच्छी आदत है, और इस आदत को सभी को बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, अभी हमारे साथ थी अनुष्का जादौन, और अनुष्का जादौन ने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी बुकर प्राइज के बारे में।

में आपको, और मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ जरूर हुआ होगा। बच्चों, अभी हमें बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: बच्चों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनोरंजन भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम लगातार पढ़ाई करते हैं तो थकान और तनाव महसूस होने लगता है। ऐसे में मनोरंजन हमें तरोताज़ा करता है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मनोरंजन का मतलब सिर्फ मोबाइल या टीवी देखते रहना नहीं होता। खेलकूद, संगीत सुनना, पुस्तकें पढ़ना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना या फिर कुछ समय परिवार के साथ बिताना चाहिए। ये एक्टिविटीज़ बच्चों हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी मदद करती है। बच्चों, मनोरंजन और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। यदि मनोरंजन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और यदि केवल पढ़ाई हो जाए तो मेंटल टेंशन बढ़ जाती है। इसलिए समय का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपनी दिनचर्या में पढ़ाई के साथ साथ खेल, व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालें। बच्चों, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ दुनियादारी का व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम शिक्षा तो बहुत अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में हम जीवन के हर मोड़ पर चले जाते हैं और हम बस यही कहते हैं।

0: बच्चों, जैसा कि हम आरंभ में आपसे बात कर रहे थे कि हमें छुट्टियों का सही उपयोग करना चाहिए, और छुट्टियों का सही उपयोग आप किस तरह से करेंगे इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं बलराम सिंह जी।
1: छुट्टी यानी छूट नहीं, छलांग का मौका। गर्मी की छुट्टी आते ही बच्चे टीवी और मोबाइल के सामने फ्री हो जाते हैं, और माता पिता इस विचार में कभी टेंशन में भी आ जाते हैं कि बच्चों की छुट्टियों का कैसे सकारात्मक उपयोग हो और सीखना भी जारी रहे। एक नया कौशल सीखना हर बच्चे के लिए जरूरी है। बच्चों का बॉडी और ब्रेन एक्टिव लर्निंग के लिए अधिक उत्साहित रहता है। बच्चों का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, और कौशल करके सीखना उन्हें यही देता है। हम आपको बता दें, 6 से 10 वर्ष के बच्चे ओरिगेमी, क्ले मॉडलिंग, रिपेयर, बागवानी सीखें, और 11 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे बेसिक कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवस से पोस्टर बनाना, इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई सब्जेक्ट नहीं आदत है। घर पर जुगाड़ चैलेंज रखें, पुराने डिब्बे से पेन स्टैंड, खराब टी शर्ट से बैग, टूटी चप्पल से क्या बन सकता है। रोज शाम 15 मिनट क्या होगा यदि गेम खेलें, क्या होगा यदि गुरुत्वाकर्षण आधा हो जाए, क्या होगा यदि पेड़ चलने लगे। बच्चा जब उल्टे सीधे उत्तर देंगे तभी दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी। ड्राइंग, कहानी लिखना, कविता, डांस, इन कार्यों में इनको ग्रेड मत दो, बस ताली बजाओ और उत्साह बढ़ाओ। नवाचार और छोटा आविष्कार, प्रॉब्लम से प्रोडक्ट तक। बच्चों को कहें कि घर की 3 समस्या लिस्ट करें। नल टपकता है, मच्छर आते हैं, पुस्तक बिखर जाती है। अब एक समस्या चुनकर उसका देसी समाधान सोचें। प्लास्टिक बोतल से नल का एक्सटेंशन, नीम की पत्ती से मच्छर भगाने का स्प्रे, इसे मेरा पहला इनोवेशन नाम दें। स्कूल खुलने पर साइंस फेयर में यही प्रोजेक्ट भी जाएगा, ऐसे मोटिवेशन दें। बड़े आविष्कार हमेशा छोटे जुगाड़ से शुरू होते हैं, ऐसी समझ बच्चों में विकसित कर छोटे छोटे प्रयास करने दें। पढ़ने और शोध करने की आदत, पठन पेज का नियम। छुट्टी में कोर्स की पुस्तक बंद पर दिमाग खुला रहे, पठन पेज नियम लागू करें। रोज कोई भी पुस्तक, कॉमिक, समाचार पत्र, मैगजीन के पेज पढ़ना। 15 वर्ष के बच्चों को कहें कि मंगल मिशन या चंद्रयान पर 2 पेज रिसर्च करके फैमिली को बताओ। गूगल कैसे करें, सोर्स कैसे चेक करें, यह भी सीखना है। पढ़ना शौक नहीं, सुपर पावर है, इसकी आदत बच्चों में विकसित करें। पुस्तकें सबसे अच्छी साथी हैं, बच्चों से इनकी दोस्ती कराएं, जिससे वो बस विषय की पुस्तक नहीं ज्ञान की पुस्तकों की ओर स्वयं से आकर्षित हों। ऑनलाइन उपक्रम बड़े बच्चों के लिए, यानी 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए छुट्टी एंटरप्रेन्योरशिप कैंप है। ग्रीटिंग कार्ड, बुक मार्क, फ्रिज, मैग्नेट, होममेड चॉकलेट, पौधे लगाओ और मोहल्ले या कहीं सोशल मीडिया पर दिखाओ, जैसे अन्य हुनर भी सीखें। लागत लाभ, पैकेजिंग, विक्रेता से बात करना सिखाएं, UPI की बेसिक जानकारी दें, साइबर सेफ्टी अवश्य समझाएं। अब उसके लिए योजना बनाना, अपने टाइम के मालिक बनो, अपनी घड़ी खुद बनाएं और टाइम टेबल सेट करें। बिना प्लान की छुट्टी वेस्ट जाती है। पहले सप्ताह में बच्चों के साथ बैठकर हॉलीडे चार्ट बनाएं। सुबह 1 घंटा स्किल, 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा खेल, 30 मिनट घर के काम में सहायता। हर रविवार को रिव्यू संडे रखें, क्या क्या सीखा, क्या किया, क्या छूटा, अगले सप्ताह क्या सुधारना है। यह आदत उन्हें जीवन भर टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे टास्क से पूरा होता है। स्वास्थ्य और फिटनेस योजना, बॉडी भी सिलेबस है, यानी स्कूल की PT मिस हुई तो क्या, घर का ग्राउंड खुला है। रोज 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी तय करें, साइकिल, रस्सी कूद, योग, बैडमिंटन, डांस, नो स्क्रीन बिफोर स्टेडियम। रूल बनाएं, खाने की छुट्टी ना दें, कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, चिप्स की जगह भुना चना। छुट्टी में 2 किलो वजन बढ़ाना नहीं, 2 नए खेल सीखना टारगेट हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। शरीर और मन दोनों की समझ बच्चों में विकसित करें। अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों की दृष्टि दें। पिज्जा अच्छा लगता है, पर क्या वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे तर्कशील

0: चर्चा करें। समाज सेवा या उपयोगी परियोजना दुनिया को 1% बेहतर सबसे पहले करो। पास के पार्क में सफाई प्रयासों के लिए मटका रखना और बुजुर्ग को समाचार पत्र पढ़कर सुनाना, कुत्तों को पानी देना, गरीब बच्चों को पढ़ा सिखाना। क्लास 8 से ऊपर के जो बच्चे हैं सोशल सर्वे करें, मोहल्ले में कितने घरों में कूड़ेदान है उसकी रिपोर्ट बनाएं। जब बच्चा समाज का कष्ट महसूस करेगा तभी लीडर बनेगा। बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव की समझ विकसित करें। स्वयं सुखपूर्वक जीने के साथ दूसरों को सुखपूर्वक जीने में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं ऐसी समझ दें। डिजिटल स्किल्स और टूल्स, हम जानते हैं कि सफलता की ये कुंजी है। छुट्टी में यह 5 डिजिटल स्किल अवश्य दें। टाइपिंग स्पीड 30 WPM, गूगल डॉक्स शीट की बेसिक जानकारी, कैनवास से पोस्टर बनाना, किने मास्टर से वीडियो एडिट करना, ईमेल लिखना, साथ में साइबर सेफ्टी के 3 नियम, पासवर्ड शेयर नहीं, अनजान लिंक न खोलो, ऑनलाइन दोस्ती में पापा मम्मी को लूप में रखो, आत्म मूल्यांकन और जर्नलिंग, खुद से बात करो, रोज 10 मिनट डियर डायरी टाइम, 3 लाइन लिखो, आज क्या नया सीखा, क्या।
1: तो बच्चों, अभी हमने आपको जानकारी दी कि छुट्टियों का सार्थक उपयोग कैसे करना चाहिए और जानकारी दे रहे थे बलराम सिंह जी। बच्चों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर तनाव और मानसिक दबाव का सामना करते हैं। ऐसे में कुछ पल खुलकर हंस लेना मन को राहत देता है। हंसी ना केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करती है। बच्चों की हंसी घर में खुशियों का माहौल बना देती है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए हंसी खुशी के पल रिश्तों को भी मजबूती देते हैं। अपने जीवन में मुस्कान और हंसी के लिए अवश्य समय निकालें। इसलिए कभी ना रोना, हंसते रहना।

तो बच्चों, जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अब आपकी ललित दीदी आपसे विदा लेती है, अगले रविवार फिर मिलेंगे। जय हिंद।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गौरी खन्ना की आवाज में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गौरी खन्ना की आवाज में गजलें। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण

0: बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज

0: समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के अतिथि। श्रोताओं, आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस से नीरज जैन की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: आज के अतिथि मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर आपकी भेंट अपने क्षेत्र के जो सिद्धहस्त लोग हैं उनसे करवाते रहते हैं, और आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट श्री

0: नरेश कुमार पारस जी को। पारस जी का नाम आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में बहुत ही फेमस है। आगरा में आपने बहुत सारा काम किया है, आगरा से बाहर भी बहुत सारा काम करते हैं। सोशल कॉज से जुड़े जितने भी चीजें हैं उनके ऊपर आपका बहुत अच्छा दखल है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो या उनके अधिकारों की बात हो, तो उस पर आपने बहुत सारा काम किया है। आज हम आरटीआई एक्ट के बारे में आपसे जानकारी करेंगे, आपके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नरेश जी आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार
0: नरेश जी, सबसे तो आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं, क्या आपकी शिक्षा दीक्षा हुई कहां से, और कैसे आपका इस सामाजिक जो काम है उनमें आपका रुझान पैदा हुआ।
1: देखिए, मैं प्रॉपर आगरा से ही हूं और आगरा में ही मेरा जन्म हुआ है। और शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, उसके बाद में एमए सोशियोलॉजी से किया है, ह्यूमन राइट्स में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। और इसके अलावा चूंकि मैं लोगों के लिए लड़ता रहता हूं प्रशासन से और उनके राइट्स के बारे में बताता हूं, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम शासन प्रशासन से उनकी बात को पहुंचा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके हम अपनी बात नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता और वो न्याय अधूरा रह जाता है।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उनकी न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कानून की पढ़ाई भी शुरू कर दी है और मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, एक साल मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और बात करें प्रेरणा वाली, तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो हमारे घर के आसपास कुछ रिक्शे वाले लोग रहा करते थे, तो उस समय टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं थे, तो रिक्शे वाला जो था हमारे पास में रहता था तो उसकी अक्सर चिट्ठी आती थी। तो एक बार वो मुझे अपने घर बुला के ले गया और बोला कि मेरे यहाँ से एक चिट्ठी आई है तो जरा पढ़ दो।
0: जी।
1: तो जो भी मुझे आता था मैंने उसको पढ़ के सुना दिया, फिर उसने कहा कि ये मुझे इसका जवाब लिखवाना है। तो चूंकि एक कक्षा 3 का विद्यार्थी क्या चिट्ठी लिखना जाने।
0: जी।
1: अब जब उसने कही तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करता हूँ। तो फिर मैं अपनी कॉपी का पेज फाड़ के ले गया और उसके यहाँ पर उसने, उसके पास में कुछ और था नहीं तो थाली जो थी उल्टी करके मुझे दे दी और आप इस पर लिख दीजिए। तो फिर मैंने पेंसिल से
0: जी
1: उसकी चिट्ठी लिखी।
0: अच्छा।
1: वो बिहार का रहने वाला था, फिर उसने चिट्ठी भेज दी, फिर उसका कुछ महीने बाद जवाब आया तो फिर वो पढ़वाने के लिए लेके आया। तो बड़ी खुशी हुई उसे कि चलो मेरी किसी ने चिट्ठी लिखी और उसका जवाब भी आया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या है कि उसके जो पास के और लोग थे वो भी चिट्ठियां लिखवाने का काम शुरू कर दिया उन्होंने।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तो फिर धीरे धीरे करके जब युवा अवस्था तक आया तो फिर आसपास के मोहल्ले के लोग जो थे वो फिर गली मोहल्ले की समस्याओं को लेकर चिट्ठियां लिखवाने लगे कि यहाँ पर गंदगी है या सफाई होनी चाहिए।
0: तो वहां से आपको मोटिवेशन मिला।
1: हाँ, तो वहां से फिर जो चिट्ठियां लिखने से लेके फिर वो एप्लीकेशन में तब्दील हो गया, सरकारी दफ्तरों में मेरी एप्लीकेशन जाने लगी, फिर लोगों की मदद होने लगी। और फिर उसके बाद में एक घटना घटी, ये 2007 की बात है
0: जी।
1: एक महिला थाने के बाहर रोती हुई मिली थी
0: जी।
1: वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उससे जब कारण पूछा तो उसने मना कर दिया, बोले कि मुझसे बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए और मेरी मदद कोई नहीं करता है। तो मैंने कहा आप बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो फिर उसने बताया कि आज से 5 साल पहले मेरे 3 बच्चे गायब हो गए थे
0: जी।
1: और 1 साल के अंदर एक एक करके 3 बच्चे गायब हो गए और मैं तब से 5 साल से लगातार थाने आ रही हूं और मेरी एक भी बच्चे की गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई है।
0: मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई है।
1: रिपोर्ट ही नहीं लिखी है।
0: अरे अच्छा,
1: ढूंढने की बात तो दूर रही, रिपोर्ट ही नहीं लिखी है
0: जी।
1: तो मैंने अंदर जाके बात की तो थाने में बताया कि नहीं, इसकी एफआईआर दर्ज नहीं है। तो उस समय 2002 में जब श्रीजी इंटरनेशनल अग्निकांड हुआ था उस समय की बात है, उसे याद है आज भी कि फैक्ट्री में आग लगी थी, उस दिन मेरा बच्चा पहला खोया था, उसके बाद में किसी ने नहीं उसको ढूंढा। तो जब ये सारी चीजें रही तो मैंने इसकी शिकायत एनएचआरसी में की, एनएचआरसी ने आगरा के एसएसपी को नोटिस जारी किया, तब जाकर 5 साल बाद उस महिला के 3 बच्चों की एफआईआर दर्ज हो पाई थी। फिर पुलिस ने प्रयास भी किया उसे खोजने का लेकिन एक भी बच्चा नहीं मिल पाया।
0: नहीं मिल पाया।
1: मैं उसके साथ खुद दिल्ली गया था, लखनऊ गया था और भी कई शहरों में उसे खोजने के लिए गया लेकिन बच्चा नहीं मिला था। तो तब मुझे ये लगा काश ये महिला मुझे अगर 5 साल पहले मिल जाती और मैं प्रयास कर देता तो बच्चों की एफआईआर दर्ज हो जाती और फिर
0: हो सकता है कि बच्चे
1: मिल जाते।
0: बिल्कुल।
1: तो उस समय मन में बड़ा कचोट रहा कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो तब से ऐसे लोगों की मदद के लिए मैं फिर समर्पित हो गया और लगातार आज तक ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ। खोए हुए बच्चों को मैं आज भी रिकवर करा रहा हूँ। अभी तक करीब 300-400 खोए हुए बच्चों को मैं रिकवर करा के उनके माँ बाप से मिलवा चुका हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और ये आगरा में ही नहीं, ये देश भर के तमाम राज्यों और शहरों से है। मैंने पश्चिम बंगाल से भी बच्चों को रेस्क्यू करा के उनके परिवार से मिलाया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, बहुत सारी जगहों से।

0: के बच्चों को बरामद करा के परिवारों से मिला दिया है।
1: जी
0: और एक और ऐसी घटना घटी जिसने मुझे आरटीआई एक्ट के बारे में प्रेरणा मिली। मुझे जानकारी मिली थी कि यहाँ नारी निकेतन में एक महिला है जो पिछले 9 सालों से बिना जुर्म की सजा काट रही है।
1: अच्छा
0: सुनने में बड़ा अचंभा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महिला बिना अपराध के कैसे सजा काट सकती है। तब आरटीआई कानून आया ही आया था
1: जी
0: तो ज्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो 2007 में मैंने वो आरटीआई लगाई। आरटीआई में जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाला था। उसमें जवाब महिला के बारे में मैंने पूछा था कि ये महिला का नाम मुन्नी था।
1: जी
0: मैंने पूछा कि ये मुन्नी किस अपराध में निरुद्ध है और ये कब से निरुद्ध है। तो तब जवाब में ये आया कि ये लड़की आज से 9 साल पहले रोड पर लावारिस अवस्था में घूमते हुए मिली थी। इसकी उम्र 14 साल थी। ये जयपुर की रहने वाली थी
1: जी
0: और पुलिस ने इसको पकड़ा था लावारिस अवस्था में। एसडीएम कोर्ट के सामने पेश किया और एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको नैतिक संकट के आधार पर नारी निकेतन में बंद कर दिया जाए।
1: नारी निकेतन में।
0: जी,
1: अच्छा
0: एक 14 साल की लड़की को उसके घर पहुंचाने के बजाय नारी निकेतन में बंद कर दिया गया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि नारी निकेतन एक ऐसा संस्थान है जहाँ सिर्फ ऐसी महिलाओं को रखा जाता है जो देह व्यापार में पकड़ी जाती हैं,
1: जी जी
0: जबकि उस बच्ची का ऐसा कोई दूर दूर
1: रिकॉर्ड नहीं
0: तक
1: था।
0: रिकॉर्ड नहीं था। और उसके बावजूद उसकी मर्जी के विरुद्ध उस बच्ची को वहां पर निरुद्ध उन्होंने कर दिया। और पिछले 9 साल से वो
1: लगातार
0: वहां
1: 9 साल तक वो वहां
0: नौ
1: रही,
0: साल तक वहां रही और उसको डाल के भूल गए कि इस बच्ची का क्या करना है।
1: मतलब बड़ी अफसोसजनक बात है।
0: अफसोसजनक बात है। तो जब देखा कि भारत में नैतिक संकट, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी सजा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 9 साल नहीं, पता नहीं कितने साल होगी। तब फिर उस लड़की को आजाद कराने के लिए मैंने प्रयास किया। मैंने उसमें एनएचआरसी को कंप्लेंट की तो एनएचआरसी की टीम यहाँ पर आई। आगरा के डीएम को वहां पेश होना पड़ा। फिर उसके लिए कैंपेन मैंने लगातार किए और इस बीच में बहुत सारे अवरोध भी पैदा हुए। कहा गया कि आप इस महिला के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, क्या
1: निश्चित
0: का
1: रूप से शासन प्रशासन से लड़ना एक मतलब बड़ी बात होती है, और
0: जी।
1: आपने ये जज्बा दिखाया, आपने ये हिम्मत दिखाई, आपने ये बहुत बड़ी बात है।
0: तो ये है कि लगातार 1.5 साल के अभियान के बाद में जीत हुई और एडीजे के आदेश पर उसको कानपुर महिला आश्रम भेजा गया जहां उसका विवाह हुआ और अब वो अपने पति के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रही है।
1: क्या बात है, निश्चित रूप से केवल केवल और केवल आपकी वजह से, आपके कारण, आपके प्रयासों से एक महिला का जीवन सुधर गया।
0: तो ये मैं मानता हूं कि अगर आरटीआई कानून नहीं होता तो
1: जी
0: उस महिला के बारे में पता नहीं चलता कि ये किस अपराध में यहाँ पे सजा काट रही है।
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: तब से फिर मैंने आरटीआई कानून को फिर उपयोग करना शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने तमाम ऐसे लोगों को जेलों से भी निकलवाया और तमाम ऐसे बड़े काम हुए जिनका एक बड़ा परिणाम हुआ। अभी रिसेंटली एक काम हुआ है कि जो जेलों में बंद कैदियों को लेकर मैंने आरटीआई मांगी थी
1: अच्छा
0: तो उसमें 5 साल का जो डेटा निकल के आया था तो हैरान कर रहे थे कि 5 सालों में 2,500 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई। यानी कि एवरेज अगर हम देखें तो हर 26 घंटे में एक कैदी की मौत हो रही थी।
1: ये आंकड़ा पूरे देश का है?
0: ये पूरे प्रदेश का, उत्तर
1: अच्छा,
0: प्रदेश का,
1: केवल उत्तर प्रदेश का,
0: केवल उत्तर
1: बताइए।
0: प्रदेश का। तो इसको लेकर फिर मैंने एनालिसिस किया, फिर सब जगह मैंने इसमें भेजा और फिर ये सारी चीजें निकल के आई। फिर ये जेल विभाग को नोटिस गए, प्रमुख सचिव को नोटिस गए तो फिर ये रियलाइज हुआ कि आखिर में ये हो क्या रहा है, कैसे इसका समाधान होना चाहिए। तो ये निकल के आया कि साहब अंग्रेजों के जमाने का जेल मैनुअल बना हुआ है, 150 साल उसे हो चुके हैं
1: जी
0: और उसी ढर्रे पर ये चल रहा है। और चूंकि अब तो अपराध के तरीके भी बदल गए हैं, पहले अपराधी होते थे, जेलें छोटी होती थी, उसी
1: जी
0: के हिसाब से है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो फिर बात उठी कि ये जेल मैनुअल में बदलाव किया जाना चाहिए।
1: जी
0: तो जेल मैनुअल के बदलाव की पहले बात भी उठी थी लेकिन वो ठप हो गया था। जब मैंने लगातार आरटीआई मांगी, फिर एनएचआरसी से नोटिस वोटिस जाते रहे तो करीब 11 बार नोटिस जारी हुए, जवाब तलब हुए। तो अभी पिछले साल अंग्रेजों के काले कानून से मुक्ति मिल गई और जेल मैनुअल में बदलाव हुआ, नया जेल मैनुअल बना है और कई सारी जेलें नई बनी हैं, बैरकों का नई का निर्माण हुआ है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है।
1: निश्चित रूप से ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके सत प्रयासों से एक इतनी बड़ी जो जो व्यवस्था थी, जो जो खराब व्यवस्था थी, 150 साल पुराने जो कानून के कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा था, उसमें सुधार हुआ और मैनुअल चेंज हुआ। ये बहुत बड़ी जीत है, ये आरटीआई कानून की जीत है और आरटीआई कानून की वजह से ही ये सफलता हासिल हुई। जी
0: जी जी एक आरटीआई से एक और हमें एक विजय मिली है, वो ये था कि कोविड के दरमियान पूरा देश बंद था, तो ऐसे में जो बच्चे हाई स्कूल इंटर बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो परीक्षाएं नहीं हुई थी।
1: जी जी
0: उनको कक्षा 9 और हाई स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उनको नंबर देकर पास कर दिया गया था।
1: जी
0: तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 40

0: 30,000 ऐसे बच्चे थे जिनको बोर्ड ने नंबर ही नहीं दिए, खाली ब्लैंक मार्कशीट दे के उनको प्रमोट कर दिया।
1: अच्छा
0: कोई किसी तरह का उन पर नंबर नहीं था।
1: जी
0: तो ऐसे 128 बच्चे मेरे संपर्क में आए जिनके पास में मार्कशीट में कोई नंबर नहीं था, और वो चाहते थे कि हमारे में नंबर मिले,
1: बस केवल उत्तीर्ण हो गए केवल।
0: केवल उत्तीर्ण हो गए थे। क्योंकि किसी जॉब में जाते हैं या कहीं एडमिशन लेंगे तो हाई स्कूल और इंटर के नंबरों के आधार पर मेरिट बनती है,
1: निश्चित रूप से जी।
0: तो वो बच्चे हाई स्कूल के नंबर न होने के कारण पिछड़ गए थे, उनको नंबर नहीं मिल पा रहे थे, और उन्होंने खूब प्रयास किया लेकिन नंबर नहीं मिल पाए।
1: जी
0: तो जब हमने ये लगा कि आखिर में माजरा क्या है,
1: जी
0: तो बोर्ड में आरटीआई डालवाई बच्चों के, तो जवाब ये आया कि जिन विद्यालयों ने हमें नंबर दिए थे हमने उनको नंबर दे दिए हैं, लेकिन जिन विद्यालयों ने हमें नंबर नहीं दिए उनको हमने सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया है।
1: यानी कि जो प्री बोर्ड के जो नंबर आने चाहिए थे बोर्ड के पास वो नहीं पहुंचे हैं, इस वजह से वहां पर बोर्ड ने नंबर नहीं दिए।
0: जी
1: जी
0: फिर हमने स्कूल से बात की, स्कूल वालों ने कहा कि हमने उनको नंबर भेजे हैं। तो जब स्कूल कह रहा है कि हमने नंबर भेजे हैं, बोर्ड कह रहा है हमें नंबर नहीं मिले हैं, तो नंबर गए कहाँ?
1: बिल्कुल
0: भाई ये आपका आपसी कोऑर्डिनेशन है, इसमें बच्चा क्यों सफर करे?
1: सही बात है।
0: तो फिर इसको लेकर हमने डीआईओएस के माध्यम से बच्चों से आरटीआई डलवाई, उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इन विद्यालय ने नंबर दिए तो नंबर हैं कहाँ, उन नंबरों की हमें सत्यापित कॉपी दीजिए। तब आरटीआई डलवाई तो फिर स्कूल से जवाब आया और डीआईओएस ने फिर मंगा के जवाब दिए कि उन्होंने नंबर भेजे थे, नंबर भेजे थे लेकिन उनमें कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उन्होंने नंबर कुछ मांगे थे, इन्होंने भेजे कुछ और थे। तो फिर हमने ये कहा कि ये बोर्ड की गलती है या स्कूल की गलती है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य सिक्योर होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो फिर जो आरटीआई में जो नंबर मिले थे उसको आधार मानकर हमने हाईकोर्ट में एक रिट दायर की, और रिट की सुनवाई हुई तो इन सारी चीजों को दोनों पक्षों को बुला के सुना गया, और फिर बाद में फैसला यही हुआ कि बोर्ड स्कूल को समझा नहीं पाया और स्कूल सही तरह से नंबर नहीं दे पाया, तो लिहाजा कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी बच्चों को नंबर उपलब्ध कराए जाएं और 1 महीने के अंदर विद्यालय नंबर बोर्ड को भेज दे, और बोर्ड अपनी एक्सरसाइज करके 2 महीने के अंदर में नंबर चढ़ा के इन बच्चों को दे दे,
1: नई मार्कशीट दे,
0: मार्कशीट दे, और 15 नवंबर लास्ट डेट रखिए, 15 नवंबर तक इन बच्चों को मार्कशीट मिल जाएंगी अंकों वाली।
1: क्या बात है, ये बहुत बड़ी जीत थी, और बच्चों के भविष्य के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी कि आपके प्रयास से ये ऐसा संभव हो पाया। तो हम लोग जब आरटीआई की बात करते हैं तो आरटीआई एक्ट के बारे में अमूमन लोग चर्चा तो करते हैं, जानते हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएंगे।
0: जी मैं श्रोताओं को विस्तार से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आरटीआई एक्ट, लोग जैसे ही एक्ट का नाम सुनते हैं तो फिर वकीलों वाला चेहरा उनके सामने आ जाता है कि भाई ये तो कोई बड़ा कानून होगा, बड़े पेचीदे होंगे इसमें,
1: जी, जी, जी।
0: तो कैसे डालेंगे, क्या धाराएं होंगी,
1: हाँ।
0: तो ये सारी चीज है। तो यहां मैं श्रोताओं को बताना चाह रहा हूं कि आपको किसी तरह का कोई पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आरटीआई कानून आपके लिए बनाया गया है, जनता के लिए कानून बनाया गया है। क्योंकि एक धारणा है कि जब हम कोई काम करते हैं या हम किसी को कोई पैसा देते हैं, चाहे हम बाजार से सब्जी खरीद के ला रहे हैं, दूध खरीद के ला रहे हैं, तो जब हम किसी से 20 रुपए की हमने सब्जी ली और उसको 50 रुपए दिए, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई 20 रुपए की सब्जी के हमने 20 रुपए काट के आप हमें 30 रुपए वापस करें। अगर वो 10 रुपए वापस करता है तो हम उससे लड़ जाते हैं कि तुमने बाकी के पैसे हमें क्यों नहीं दिए। और इवन देन कभी ये भी होता है कि अगर हम अपने किसी बच्चे को सामान मंगाते हैं, उसको अगर 20 रुपए दे दिए और उससे बोल दिए कि एक बिस्किट 5 रुपए वाला ले आओ अपने लिए, जब बिस्किट लेके आता है तो हम उस बच्चे से पूछते हैं बेटा हमने तुम्हें 20 रुपए दिए थे, उसमें से बिस्किट आया, बाकी के पैसे कहाँ हैं?
1: बिल्कुल।
0: तो वो बच्चा बताता है। तो ये हमारे हिसाब की परंपरा है, हम हर किसी से हिसाब मांगते हैं। तो यही हिसाब का जो दायरा है वो बढ़कर फिर सरकारों तक गया, जब चूंकि सरकार का निर्माण जनता करती है और सारे के सारे लोक सेवक हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, तो एक उनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर में जब सरकार विकास कार्य करा रही है या जो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो जा रहा है तो लोगों को हिसाब भी मिलना चाहिए। तो इसी हिसाब की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये कानून बना था। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था, जिससे ये था कि जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, जो भी सरकार में काम होते हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, इससे पारदर्शिता आएगी। और इसमें किसी तरह की कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, एक सादा कागज पर, मैं बता दे रहा हूँ सादा कागज, अगर कोई फॉर्मेट कहता तो, लेकिन इसका कोई विधिवत फॉर्मेट नहीं है, आप सादा कागज पर आप अपना आवेदन लिखिए, आप अपने सवाल लिखिए और सवाल के साथ में 10 रुपए का शुल्क आप उसमें लगा दीजिए, और ये जो 10 रुपए का शुल्क होगा वो आपका डीडी के रूप में हो सकता है, चेक के रूप में हो सकता है, पोस्टल ऑर्डर के रूप में हो सकता है, और ये नहीं है तो आप नगद 10 रुपए भी आप ले सकते हैं
1: जी।
0: तो इनको लगाकर आप अपने सवालों के साथ में संबंधित जो भी विभाग में आप सवाल

0: पूछना चाह रहे हैं उसके जन सूचना अधिकारी के नाम पत्र लिखकर आप भेज दीजिए, चाहे तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए या दफ्तर में जाके सीधे आप उनको दे दीजिए, वो आपको रिसीविंग देंगे और 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको जवाब मुहैया कराएंगे जी। तो वो जब जवाब दे देंगे तो फिर उसके बाद में आपको लगता है कि 30 दिन के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो वो उस विभाग की तरफ से इनकार माना जाएगा, तो आप उसके बाद में फर्स्ट अपील आप दाखिल कर सकते हैं उसी विभाग के बड़े अधिकारी को। आप किसी भी दफ्तर में जाएंगे तो वहां एक जन सूचना अधिकारी का एक पटल बना हुआ है, उसके दरवाजे पे उसके नाम की नेम प्लेट लगी होगी कि ये जन सूचना अधिकारी है और उसी विभाग में लिखा होगा ये प्रथम अपीली अधिकारी है
1: जी।
0: जब अगर वो आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आपको प्रथम अपील करनी पड़ेगी, और यदि वो प्रथम अपील में भी आपको जवाब नहीं मिलता है तो आपको द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में करनी होगी।
1: अच्छा, यानी कि प्रथम अपील तो उसी विभाग के जो अपीली अधिकारी हैं उनको करनी है
0: जी,
1: तो उनसे जवाब भी 30 दिन के अंदर आ जाता है?
0: हाँ,
1: या उसकी भी कोई समय सीमा?
0: उसमें 45 दिन की समय सीमा होती है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो
1: यानी कि मान लीजिए मैंने किसी विभाग से कोई सवाल पूछा, कोई RTI डाली मैंने और 30 दिन के अंदर मुझे जवाब नहीं मिला, तो जवाब नहीं मिलने से लेकर 45 दिन के
0: जी,
1: अंदर
0: जी,
1: मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी तक अपनी
0: अपील करनी होगी
1: जी।
0: और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर 60 दिन के भीतर आपको राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में आपको अपील करनी पड़ेगी
1: जी,
0: क्योंकि कुछ मामले कुछ विभाग राज्य सरकार के अधीन आते हैं, कुछ विभाग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं
1: जी, जी।
0: जो राज्य सरकार के अधीन है आप वहाँ राज्य सूचना आयोग में करें, जो केंद्र सरकार के में वहाँ केंद्रीय सूचना आयोग में आप अपील कर सकते हैं
1: जी, जी।
0: और यहाँ मैं श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ क्योंकि कई बार इस तरह का सवाल आता है कि हमने पहले बार आवेदन किया और उसमें हमने 10 रुपए का शुल्क लगाया, फिर उसके बाद में हमें प्रथम अपील करनी है तो कितने पैसे लगेंगे
1: जी।
0: तो यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो आपको पैसा देना है 10 रुपए का जो शुल्क देना है वो केवल एक बार देना है जब आप पहली बार आवेदन करेंगे
1: जी, जी, जी, जी।
0: उसके बाद में आपको किसी भी तरह का कोई पैसा आपको नहीं देना है
1: जी।
0: और अगर कोई विभाग आपको जवाब देता है, आप किसी भी दस्तावेज को अगर आप लेते हैं तो वो 2 रुपए प्रति पृष्ठ के हिसाब से आपको फोटोस्टेट करा के देगा, उसका चार्ज लगेगा, बाकी की किसी भी तरह का कोई चार्जेबल नहीं है
1: जी, जी, जी।
0: और जब अपील आप कर देंगे तो एक इसमें यह भी प्रावधान है कि जब आप अपील में आपको बुलाया जाता है, मान लीजिए लखनऊ बुलाया गया या फिर आपको दिल्ली बुलाया जाता है, तो एक तो आप अब तो ऑनलाइन की भी व्यवस्था हो गई है, आप कह सकते हैं साहब लोकवाणी के माध्यम से हमारी सुनवाई कर लें,
1: मतलब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
0: माध्यम से, और अगर आप वहां जाके अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप वहां चले जाइए और आप अपने आवेदन पत्र में जो आपने अपील की है उस अपील में आप कह सकते हैं कि साहब मेरा आने जाने में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा मुझे दिलवाया तो आपको यात्रा भत्ता मिल जाएगा जब आपका फैसला होगा। और लगता है कि जब राज्य सूचना आयोग जब उसको सुनवाई उसकी करेगा और लगता है कि लोक जन सूचना अधिकारी ने गड़बड़ी की है और जानबूझकर उनको सूचनाएं नहीं दी हैं तो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, मैक्सिमम 25,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है
1: जी, जी।
0: तो ये हमारी RTI के प्रक्रिया है, इस तरह से हम RTI का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं श्रोताओं को बता दूं कि आपको यहाँ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके सवाल कैसे हों
1: जी,
0: सवाल की शार्पनेस रखना बहुत जरूरी है, और यदि आपके सवाल ऊल जुलूल हुए तो आपको ऊल जुलूल ही जवाब मिलेगा, आपके सवाल स्पष्ट होने चाहिए, आप पूछना क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज स्पष्ट होगी तो आपको जवाब भी स्पष्ट मिलेंगे। आप किसी का निरीक्षण कर सकते हैं, कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो आप उसका नमूना ले सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, किसी दफ्तर के रिकॉर्ड रूम का आप अवलोकन कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड देख सकते हैं
1: जी,
0: तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो आप सवाल हैं आपके सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए।
1: तो RTI एक्ट के तहत किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या जानकारी ली जा सकती है, जो दस्तावेज हैं केवल उन्हीं को देखा जा सकता है या जो चीजें हैं ऑफिस में बस केवल वही देखी जा सकती हैं, या मतलब क्यों क्या मतलब इसका भी जवाब मिलता है?
0: हाँ, ये मैं आपको बता दूं, जब चूंकि RTI कानून में भी संशोधन हुए हैं, जब कानून लागू हुआ था तो बहुत सारी चीजें थी और उसका दुरुपयोग भी होने लगा
1: जी,
0: तो उसके बाद में कानून में संशोधन भी हुए तो उसमें ये रहा कि क्या कब क्यों कैसे
1: जी
0: इन शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
1: जी
0: तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है
1: कि पूरा आवेदन, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई 10 पॉइंट रखे,

0: सवाल पूछे और 10 सवालों में से 3 सवाल ऐसे हैं जिसमें ये वाई व्हाट व्हेन ये जानकारियां हैं इस तरह के,
1: तो
0: तो
1: वो
0: ये
1: आवेदन निरस्त हो सकता
0: पूरा
1: है
0: आवेदन निरस्त हो सकता है।
1: जी,
0: अच्छा,
1: पूरा आवेदन
0: तो
1: उसमें
0: ये
1: निरस्त हो सकता
0: किस मतलब आरटीआई की किस धारा के तहत ऐसा होता है?
1: है। ये देखिए, वैसे तो धारा 6-3 में ही मांगा जाता है, और धारा 6 और एक अलग होती है, एक धारा 6-1, धारा 6-3। तो चूंकि धाराओं के बारे में हम ज्यादा जानकारी देंगे तो श्रोता उसमें भटक
0: हाँ,
1: जाएंगे
0: भटक जाएंगे।
1: फिर,
0: जी
1: चूंकि
0: जी जी
1: ये फिर पब्लिकली
0: बिल्कुल
1: वाला वो नहीं
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, लेकिन
0: बिल्कुल
1: फिर भी मैं श्रोताओं को बात बता देता हूँ कि आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं ज्यादा धाराओं के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल 2 धाराओं के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी कभी आप आवेदन लिखें तो
0: जी
1: उसमें आप लिखें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3),
0: अच्छा
1: इसके तहत आवेदन। इसमें ये होगा कि धारा 6(3) जो है वो हमें ये बताती है कि अगर आपका आवेदन किसी गलत विभाग में चला जाता है या किसी गलत पटल पर चला जाता है और वहां पर आपकी सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, तो उस संबंधित जन सूचना अधिकारी का दायित्व तो है कि आपके आवेदन को वो सही जगह पर भेजे।
0: अच्छा, सही जगह पर वो भेजे या वो वापस करे?
1: नहीं, आपको वापस नहीं करेगा, वो सही जगह पर भेजेगा, जो पटल है उस सही पटल पर वो जन सूचना अधिकारी भेजेगा।
0: अच्छा
1: और चूंकि धारा 6(3) का मतलब ही है कि अगर गलत स्थान पर आ गया है तो वो सही स्थान पर पहुंच जाएगा, आपको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: जी,
1: तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि मान लो गलत चला जाता है तो वहां सुधार की गुंजाइश है, तो जो जन सूचना अधिकारी है वो हमारे पत्र को सही जगह पे भेज देगा। उसके लिए 5 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, जैसे 30 दिन
0: अच्छा
1: का समय होता है तो वो 35 दिन का माना जाता है।
0: जी
1: और यहाँ फिर दूसरी धारा का मैं बता रहा था, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, धारा 19, धारा 19 के तहत अपील की जाती है। जब आप प्रथम अपील करेंगे तो उस अपील की आप धारा को लिखना अनिवार्य है,
0: जी
1: और बाकी का आपको धाराओं पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है,
0: हाँ,
1: केवल
0: यानी
1: सार।
0: कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप सूचना एकत्र कर सकते हैं, बस कर ये ध्यान रखना है कि आपको कि आपके आवेदन में कब क्यों कहाँ कैसे ये प्रश्न नहीं होने चाहिए। जो आपको सूचनाएं मांगनी है वो सूचनाएं दस्तावेज के रूप में अगर कार्यालय में उपलब्ध हैं तो कार्यालय आपको उपलब्ध करवा देगा।
1: हाँ, स्पष्ट लिखिए कि हमें फला फला तारीख में आपके यहाँ पे एक आदेश पारित हुआ, उसकी डेट अगर आपको पता है तो वो डेट का उल्लेख कर दें, इस डेट को ये आदेश पारित हुआ था, उस आदेश की
0: प्रति
1: सत्यापित छाया प्रति हमें उपलब्ध कराएं,
0: जी
1: तो उनके लिए भी आसानी होगी, वो उसको आदेश को फोटोस्टेट करा के और सत्यापित करके आपको दे देंगे।
0: जी जी जी जी
1: तो यही है कि आपके सवाल सही होने चाहिए।
0: अच्छा, कई बार हम लोग जब आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं तो ये होता है कि तृतीय पक्ष की सूचना नहीं दी जा सकती है, उसके बारे में क्या है?
1: देखिए, बात तृतीय पक्ष तो ये है कि जैसे कि अगर आरटीआई के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ लोग अनावश्यक जानकारियां मांगते हैं,
0: जी
1: व्यक्तिगत जानकारियां मांगते हैं कि भाई कोई अधिकारी है किसी विभाग में तो उसका आप पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं, इसका अकाउंट नंबर क्या है, इसके बच्चों का क्या है, पति पत्नी के बीच में क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्तिगत उस पर आ जाती हैं, तो व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि कोई भी व्यक्ति संस्थागत रूप में आरटीआई का उपयोग नहीं कर सकता है,
0: जी
1: किसी संस्था के राजनीतिक पार्टी के लेटर हेड पर या किसी संस्था प्रमुख के नाम से वो आरटीआई नहीं मांग
0: नहीं
1: सकता
0: मांग
1: है,
0: सकता, मतलब व्यक्तिगत रूप से आरटीआई मांगनी
1: केवल
0: है।
1: व्यक्तिगत रूप
0: जी
1: से ही
0: जी
1: आरटीआई
0: जी
1: मांग सकता
0: जी
1: है, क्योंकि उसमें जिक्र है भारत का नागरिक,
0: जी जी
1: भारत का नागरिक ही आरटीआई मांग सकता है, उसमें ये नहीं है कि मैं किसी संस्था का व्यक्ति हूं या फिर मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं और मैं अपने नाम के नीचे उस राजनीतिक दल का नाम लिखूं और तब आरटीआई मांगूं।
0: नरेश जी,
1: ये
0: कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग इस जो एक बेहद महत्वपूर्ण कानून है, बेहद महत्वपूर्ण जो एक्ट है, इसका दुरुपयोग करते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है कि कई बार कुछ लोग सूचनाएं केवल इसलिए मांगते हैं कि बस परेशान करना है?
1: देखिए, इसमें ये है कि कोई भी कानून या कोई भी चीज़ जब लागू होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
0: जी
1: तो जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव भी होता है, कुछ लोग इस तरह का सूचना मांग के परेशान करने वाला भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो जन सूचना अधिकारी है ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि उनके सवालों को देख लें कि वो किस तरह के सवाल हैं,
0: जी
1: जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं या फिर व्यक्तिगत सवाल मांग रहे हैं या फिर परेशान करने वाला है, तो वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। अगर जनहित के सवाल हैं तो उनका वो जवाब दे दें, और उनके अगर व्यक्तिगत सवाल हैं

0: परेशान करने वाले हैं तो उनको नकारा भी जा सकता है।
1: जी जी जी,
0: तो ये जन सूचना अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सूचना के अधिकार के बारे में, और हमारे श्रोताओं को आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो कानून जो लागू हुआ है, इस कानून को अब 18 साल हो चुके हैं, ये एक वयस्क हो गया है
1: जी।
0: लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग इस कानून का उपयोग कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, जिसके कारण

0: पीड़ित रहते हैं, किसी ने पेंशन के लिए फॉर्म भरा,
1: जी जी
0: महीनों सालों बीत गए उसकी पेंशन नहीं आई, और किसी ने किसी और आवेदन के लिए किया तो वो नहीं हो पाता, तो आप बेझिझक
1: आरटीआई का
0: होके
1: उपयोग कर सकते हैं।
0: सरकारी दफ्तर में जाइए, वहां जाके 10 रुपए का आप आरटीआई के तहत आवेदन कीजिए, पूछिए कि मैंने फला फला तारीख को आवेदन किया था और मेरा किन कारणों से पेंशन नहीं बनी, या मेरा किन चीजों से काम नहीं हुआ, आपके गांव में कोई सड़क नहीं बनी है तो उस सड़क के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि ये इसके कब विकास हुए, विकास कार्य में कितना धन आवंटित हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज ले सकते हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई सड़क बन रही है तो आप
1: यानी कि
0: उसका भी
1: जनहित
0: निरीक्षण कर
1: के
0: सकते।
1: कामों के लिए आप आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं, और कीजिए, खुलकर कीजिए,
0: बिल्कुल कीजिए।
1: बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को आड़े मत आने दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पारस जी, आपने हमारे श्रोताओं को आरटीआई एक्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत आरटीआई कार्यकर्ता नरेश पारस से नीरज जैन की बातचीत, और इसी बातचीत के साथ ही कार्यक्रम आज के अतिथि यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए सुनते हैं वीर जारा फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में वीर जारा फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक उदित नारायण की, शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है अनु मलिक की।

से ये गीत, शब्द रचना थी समीर की, संगीत रचना थी अनु मलिक की। आइए अब अगला गीत सुनते हैं शान और कैलाश खैर की आवाजों में, फिल्म फना से। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विनोद राठौर आशा भोसले की आवाज में फिल्म बाजीगर का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर, आशा भोसले की आवाजों में फिल्म बाजीगर का ये गीत। शब्द रचना थी जफर गोरखपुरी की और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहर कालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजने को है। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के

0: निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओक को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजवेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5:05 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी नशा मुक्त भारत अभियान पर। वार्ता में सुनिएगा, मानव की सच्ची सेवा है, मानवता की सच्ची सेवा है रक्तदान। वार्ताकार होंगी डॉक्टर शुभ्रा बंसल। ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक शाम 6:00। इसमें चर्चा रहेगी पॉली हाउस की उपयोगिता पर। वार्ता में सुनिएगा, गर्मियों में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल कुमार। साथी होगा मंडी भाव, मौसम की जानकारी और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनिएगा चर्चा विश्व रक्तदान दिवस पर। साथ ही वार्ता प्रसारित की जाएगी नशा जीवन का नाश। वार्ताकार होंगी ऋतु कुलश्रेष्ठ। साथ ही हमारे मीडियम वेव पर आप सुन सकते हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंगम में खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। न्यूज ऑन एयर पे कार्यक्रम यथावत रूप से चलते रहेंगे।

विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे वार्ता प्रवासी पक्षियों पर आसन खतरे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवीन शर्मा।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम को आप सुनेगा शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत।

10 बजे से आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, ये थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

वामन अवतार फिल्म में भी आपने सुना प्रदीप को। शब्द रचना थी प्रदीप की, संगीत रचना अविनाश व्यास की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है द बर्निंग ट्रेन से। आवाजें हैं सुषमा श्रेष्ठा, पद्मिनी कोलापुरी और साथी की। साहिर लुधियानवी की रचना को संगीतबद्ध किया है आरटी परमन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म परिणय से। आवाजें हैं रामानंद शर्मा और साथी की, संगीत आर डी वर्मन का है।

शर्मा बंधु को अभी आपने सुना फिल्म परिणय में। रामानंद शर्मा के लिखे गीत को संगीत से संवारा था आर टी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या भी यहीं संपन्न होता है। अब समय हो चला है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही चीजों का सहारा लेते हैं। कभी तनाव कम करने के लिए संगीत सुनते हैं, कभी दोस्तों से बातें करते हैं, तो कभी परिवार के साथ समय बिताकर मन हल्का कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किलों का सामना करने की बजाय ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो उन्हें धीरे धीरे खुद से ही दूर कर देते हैं। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, पढ़ाई का तनाव, करियर की चिंता, रिश्तों में दबाव और सोशल मीडिया की चमक दमक के बीच कई युवा ऐसे भी हैं जो कुछ समय के लिए राहत पाने की उम्मीद में गलत आदतों की ओर बढ़ रहे जाते हैं। शुरुआत अक्सर छोटी चीज़ों से होती है, सिर्फ जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव या फिर ये सोच कि एक बार से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कई बार यही एक कदम आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, नशा मुक्त भारत अभियान। उससे पहले मुझे जान लीजिए दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रोशनी शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा का यूथ स्पेशल कार्यक्रम युववाणी। अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को किस तरह प्रभावित करता है और हम सब मिलकर एक स्वस्थ और जागरूक भारत के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को, हम सबको नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ, सकारात्मक तथा जिम्मेदार जीवन की ओर प्रेरित करना है। दोस्तों, आखिर नशा है क्या? नशा वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ या आदत पर इतना निर्भर हो जाए कि उसके बिना उसे सामान्य महसूस ही ना हो, चाहे वह शराब हो, तमाकू हो, ड्रग्स हो या किसी अन्य प्रकार का नशा। और इन सब का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन, परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि नशा केवल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सच तो ये है कि इसका असर व्यक्ति से कहीं आगे तक जाता है। एक युवा जो अपने सपनों को पूरा कर सकता था, वह अपनी ऊर्जा, समय और स्वास्थ्य खोने लगता है। परिवार चिंता में रहता है, पढ़ाई और काम भी प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास यूं मान लो कि खत्म ही हो जाता है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि हर समस्या का समाधान भी होता है। नशे से बचाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। अपने दोस्तों

0: का चुनाव सोच समझ कर करना, तनाव को स्वस्थ तरीकों से संभालना, खेल कूद और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेना, परिवार के साथ संवाद रखना और ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच ना करना। दोस्तों, ये सभी इतने छोटे छोटे कदम हैं जो हमेशा बड़ी परेशानियों को दूर रख सकते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या? उनकी सोच और उनके सपने हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और आत्मविश्वास मजबूत, तो कोई भी गलत आदत हमें हमारी मंजिल से नहीं भटका सकती। इसलिए ज़रूरी पता है क्या है? कि हम खुद भी जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सही दिशा दिखाएं। दोस्तों, स्वस्थ जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक जिम्मेदारी है। जब युवा सही दिशा चुनते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तब वे स्वयं के साथ साथ देश की भी शक्ति बनते हैं। और संस्कृति की बात चल रही हो तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए मैं छोड़ना चाहूँगी। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अनेक ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो प्रकृति, धरती और जीवन से उत्सव से जुड़े होते हैं। इन्हीं में से एक विशेष पर्व है रजस संक्रांति। ये पर्व विशेष रूप से महिलाओं, प्रकृति और कृषि जीवन से जुड़ा माना जाता है। अब आपका काम है ये बताना कि ये अनूठा पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सोचिएगा जरूर, इसका सही उत्तर हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नशा मुक्त भारत अभियान की, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्वस्थ जीवन शैली और सही निर्णय हमारे जीवन को किस तरह सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तभी हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए बेहतर योगदान दे पाते हैं। स्वास्थ्य की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये संदेश है मानवता, संवेदनशीलता और दूसरों के जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी का। कई बार किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में नई उम्मीद लेकर आ सकता है। ऐसा ही एक महान कार्य है दोस्तों, रक्तदान। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर किसी मरीज के लिए रक्त की एक यूनिट भी जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकती है। और यही कारण है कि रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर हम इसी विषय को और बेहतर ढंग से समझेंगे। रक्तदान से जुड़े अनेक प्रश्न, भ्रांतियां और ज़रूरी जानकारियां हैं जिनके बारे में जागरूक होना हम सभी के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर शुभ्रा बंसल से मानवता की सच्ची सेवा है रक्तदान के बारे में।
6: साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ जो समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, और वह विषय है रक्तदान, ईश्वरीय वरदान। साथियों, रक्तदान सबसे निस्वार्थ कार्यों में से है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह एक सरल स्वैच्छिक कार्य है जिसमें रक्त दिया जाता है जो सर्जरी, दुर्घटनाओं, एनीमिया, कैंसर या हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जान बचा सकता है। एक बार किया गया रक्तदान 3 जीवन बचा सकता है। यह सिर्फ तरल नहीं बल्कि एक जीवित टिश्यू है जो कोशिकाओं से बना होता है। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका रक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर होता है। यह किसी भी प्रकार के रक्त समूह ले सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि

रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। वैज्ञानिक आज तक खून जैसी कोई तरल पदार्थ नहीं बना सके हैं, इसलिए रक्तदान जरूरी है। रक्त के कुछ मुख्य घटक जो रक्तदाताओं से लेकर जरूरतमंद मरीजों को स्थानांतरित या ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स या RBC, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए खून की कमी, एनीमिया, सर्जरी या चोट लगने में इन्हें दिया जाता है। दूसरा, प्लाज्मा। यह रक्त का तरल हिस्सा होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, हार्मोन आदि होते हैं, इसलिए जलन, लिवर की बीमारी या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर में इसे दिया जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स। यह खून के थक्के जमाने में मदद करता है, इसीलिए कैंसर, डेंगू या भारी रक्तस्राव में इसकी जरूरत होती है। ये सभी घटक आवश्यकता अनुसार अलग-अलग रोगियों को अलग-अलग समय पर दिए जा सकते हैं। इसी वजह से रक्तदान में दिया गया एक यूनिट रक्त 3 जिंदगियां बचा सकता है, जिससे रक्त की हर बूंद अमूल्य बन जाती है। रक्त बैंकों और अस्पतालों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नियमित रक्तदान पर निर्भर रहना पड़ता है। रक्तदान सुरक्षित, त्वरित और लगभग दर्द रहित होता है। मानव शरीर कुछ हफ्तों में स्वयं ही रक्त की पूर्ति कर देता है। स्वैच्छिक रक्तदान समाज में जिम्मेदारी और करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में अक्सर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह दूसरों की जान बचाने का एक महान तरीका है। वैसे तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, लेकिन स्वैच्छिक गैर पारिश्रमिक रक्तदाता रक्त आपूर्ति की रीढ़ होते हैं। यह ऐसे रक्तदाता हैं जो कम जोखिम वाले समूह से आते हैं और जिन्हें किसी भी रूप में भुगतान नहीं किया जाता। रक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम 100% स्वैच्छिक रक्तदान की ओर बढ़ें, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित तरीका साबित हुआ है। स्वैच्छिक गैर पारिश्रमिक रक्तदाता कौन होते हैं? तो यह वह व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से रक्त, प्लाज्मा या अन्य रक्त घटक देता है और इसके लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लेता। अब हम बात करते हैं स्वैच्छिक रक्तदाता की कुछ श्रेणियों के बारे में। तो सबसे पहली श्रेणी होती है नया स्वैच्छिक रक्तदाता, जिसने पहले कभी रक्तदान नहीं किया। दूसरी श्रेणी में नियमित स्वैच्छिक रक्तदाता आता है, जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं, तथा तीसरी श्रेणी में नियमित गैर पारिश्रमिक रक्तदाता आते हैं, जिसने कम से कम 3 बार रक्तदान किया हो और हालिया रक्तदान पिछले 1 वर्ष के भीतर किया हो। अब हम स्वैच्छिक रक्तदाता के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि रक्त की कमी को दूर करना और पूरे वर्ष सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षित रक्त की पहुंच सुनिश्चित करना, रक्तदान के लाभ और पेशेवर रक्तदाताओं से जुड़े खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना, स्थायी और सुव्यवस्थित रक्तदाता डेटाबेस बनाना तथा पेशेवर रक्तदाताओं को हटाकर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना। अब रक्तदान के लिए पात्र कौन-कौन से हो सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, पुरुष हो या महिला, रक्तदान कर सकता है। पुरुष हर 3 महीने में एक बार सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं, जबकि महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। इसलिए हर वह व्यक्ति जो स्वस्थ है और आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। जो आवश्यक मानदंड होते हैं वह हैं आयु 18 से 60 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन लेवल 12

0: दशमलव 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। नाड़ी या पल्स 50 से लेकर 100 प्रति मिनट के बीच होनी चाहिए। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, जिसमें सिस्टोलिक 100 से लेकर 180 mmHg और डायस्टोलिक 50 से लेकर 100 mmHg के अंदर होना चाहिए। तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना हो और वजन 45 किलोग्राम से ज्यादा हो। साथ ही रक्तदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किन किन परिस्थितियों में रक्तदान नहीं करना, जैसे जिसने पिछले वर्ष में रेबीज या हेपेटाइटिस बी का टीका लिया हो, जिसने 3 महीने में रक्तदान किया हो, पिछले 24 घंटे में शराब का सेवन किया हो, सर्दी खांसी या बुखार हो, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं या महिला दाता जो मासिक धर्म के दौरान हैं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, कैंसर, खून की बीमारी या वे लोग जिन्हें टीबी, अस्थमा, एलर्जिक विकार या किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी जैसे लिवर रोग, किडनी रोग या हृदय रोग हो, वे रक्तदान करने से बचें। अब हम रक्तदान किन किन स्थानों पर कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले है रक्त बैंक। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अधिकृत रक्त बैंक में जाकर रक्तदान कर सकते हैं। दूसरा, बाहरी कैंप, जैसे स्कूलों, कंपनियों आदि में आयोजकों द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर। तीसरा है अस्पताल, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। अंत में मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि रक्तदान एक ईश्वरीय कार्य है, जिसके जरिए मानवता की सच्ची सेवा की जा सकती है। इसलिए इसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और जीवन एवं मानवता को बचाकर पुण्य के भागी बनना चाहिए।
1: तो दोस्तों, आपने जाना डॉक्टर शुभ्रा बंसल से मानवता की सच्ची सेवा है रक्तदान के बारे में। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको रक्तदान के महत्व को समझने का अवसर मिला होगा। सचमुच दोस्तों, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना और किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। रक्तदान ऐसा ही एक नेक कार्य है जो ना केवल किसी की जान बचा सकता है, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को और भी मजबूत करता है। दोस्तों, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो केवल बीमारियों से दूर रहना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अपने शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी बात से जुड़ा है हमारा अगला विषय। आजकल आपने देखा होगा कि युवा नई नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं। कोई पहाड़ों में ट्रैकिंग करना चाहता है, कोई रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेता है, तो कोई पैरा ग्लाइडिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लेता है। इन्हीं गतिविधियों को हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स सिर्फ रोमांच के लिए नहीं होते, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, उनके बारे में पता चलता है, और हम ये महसूस करते हैं कि अगर हौसला हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसके साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें प्रकृति के करीब भी ले जाते हैं। पहाड़, नदियाँ, जंगल और खुले आसमान के बीच बिताया गया समय हमें मानसिक रूप से भी तरोताज़ा कर देता है। शायद यही वजह है कि आज के युवा इन गतिविधियों की ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रोमांच का मतलब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एडवेंचर गतिविधि में भाग लेने से पहले सही जानकारी, प्रशिक्षण और सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका असली आनंद लिया जा सकता है। कुल मिलाकर एडवेंचर स्पोर्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत हमारे डर पर जीत पाने में ही छिपी होती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ अब समय हो गया एक छोटे से संगीत विराम का।

हम बात कर रहे थे एडवेंचर स्पोर्ट्स की, वहाँ हमने जाना कि कैसे नई चुनौतियों को स्वीकार करना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन आज के समय में चुनौतियाँ सिर्फ पहाड़ों या खेलों तक सीमित नहीं हैं, बदलती तकनीक के साथ करियर की दुनिया भी तेजी से बदल रही है और युवाओं के सामने कई नए अवसर भी खुल रहे हैं। कुछ साल पहले तक जिन क्षेत्रों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, आज वही क्षेत्र युवाओं के लिए आकर्षक करियर विकल्प चुन बनते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है डेटा साइंस। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आज का दौर डेटा का दौर है। हम जब भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या किसी ऐप का उपयोग करते हैं, तो हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में डेटा तैयार होता है। लेकिन ये डेटा तभी उपयोगी बन पाता है जब उसे सही तरीके से समझा और विश्लेषित किया जाए। यही काम डेटा साइंस का होता है। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो डेटा साइंस ऐसी तकनीक और विधियों का इस्तेमाल है जिनकी मदद से बड़ी मात्रा में उपलब्ध जानकारी को समझा जाता है और उससे उपयोगी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, खेल, कृषि, परिवहन और लगभग हर क्षेत्र में डेटा साइंस का उपयोग हो रहा है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर किसी युवा को रुचि है गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर और समस्याओं को हल करने में, तो डेटा साइंस उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट जैसी कई भूमिकाएं आज काफ़ी मांग में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में सीखने के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को नए कौशल सीखने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। इसलिए चाहे कोई भी क्षेत्र हो, नई तकनीकों को समझना और खुद को समय के साथ अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ आप भी अपने सपनों और संभावनाओं को नई उड़ान देंगे। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर, और उससे पहले हो जाए एक और म्यूजिक।

तो दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था। दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि रजिस संक्रांति पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। दोस्तों आज का टिप ऑफ द डे भी यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, जिसके बारे में हमने पूरे कार्यक्रम में बातचीत भी की है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े सपनों को हकीकत में बदलती हैं। इसी संदेश के साथ मुझे रोशनी शर्मा को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

जिसके बारे में हमने पूरे कार्यक्रम में बातचीत भी की है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े सपनों को हकीकत में बदलती हैं। इसी संदेश के साथ मुझे रोशनी शर्मा को दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

राम राम किसान भैया और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक में। और मैं हूं आपकी रेडियो बहन सोमा जैन। और बताइए आप सब कैसे हैं भैया। जून का महीना गर्मी से सब बेहाल है, लेकिन ये जून का महीना हम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। ये वो समय है जब खेतों में नई फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है और हम किसान आने वाले मौसम की योजनाएं बनाते हैं और आने वाले खरीफ फसलों की तैयारियों में भी जुट जाते हैं। बदलते मौसम, अनियमित वर्षा, तेज गर्मी और बढ़ती उत्पादन लागत के बीच अब हम किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम लागत में अधिक और गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन प्राप्त करना है ना। इसके बारे में हम रोज सोचते हैं। ऐसे में आधुनिक खेती की एक महत्वपूर्ण तकनीक है पॉलीहाउस खेती। पॉलीहाउस किसानों को मौसम की मार से बचाते हुए सब्जियों, फूलों और दूसरी फसलों को बेहतर उत्पादन लेने का अवसर प्रदान करता है। पॉलीहाउस पौधों के लिए एक सुरक्षित घर है जहां उन्हें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाकर बेहतर वातावरण दिया जाता है। इसके अंदर तापमान, नमी और प्रकाश काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। साथियों, ये तो हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले तक खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर थी, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल रही हैं। ऐसे में कई बार हम किसानों की मेहनत पे पानी फिर जाता था। ऐसे में पॉली हाउस इन समस्याओं का एक प्रभावी समाधान बनकर उभरा है। पॉली हाउस फसलों को मौसम की मार से बचाता है। तेज गर्म हवाएं, भारी बारिश, ओलावृष्टि, अचानक पड़ने वाला पाला, इन सभी का असर पॉली हाउस के अंदर उगाई गई फसलों पर बहुत कम पड़ता है और हम किसानों को उत्पादन में स्थिरता मिलती है। है ना, ये अच्छी बात। ऐसा ही तो हम सब चाहते हैं भाई। आज जल संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता है। साथियों, पॉली हाउस में अधिकतर ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई से पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बचत होती है, खरपतवार कम उगते हैं और पौधों की जो ग्रोथ होती है, उनकी जो वृद्धि होती है वो बेहतर होती है। कई बार खुले खेत की तुलना में 40-60% तक पानी की बचत संभव होती है अगर हम ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाते हैं। सोचो जरा, इसे अपनाकर हम कितना सारा पानी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि पॉली हाउस में पौधों को नियंत्रित वातावरण मिलता है, इसलिए पौधे स्वस्थ

0: रहते हैं, फलों और सब्जियों का आकार अच्छा होता है, गुणवत्ता बेहतर होती है और उत्पादन अधिक मिलता है। और अगर हमारी फलों सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी होती है ना, तो हमें बाजार में इसका अच्छे मूल्य भी मिलता है। लोग कहते हैं अब हर मौसम में हर सब्जी मिलती है, भाई ये पॉली हाउस की ही तो देन है। पॉली हाउस के माध्यम से कई फसलों की ऑफ सीजन खेती की जा सकती है। भैया ज़रा सोचो, जब बाज़ार में किसी सब्जी की कमी हो और उसी समय आपके पास बिक्री के लिए फसल तैयार हो, कीमतें बढ़ जाती हैं जिसका सीधा लाभ आपको ही मिलेगा। पॉली हाउस में कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे टमाटर हो, शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, मिर्च, बैंगन, ये सारी सब्जियां हम पॉली हाउस में उगा सकते हैं। साथ में अगर फूलों की खेती की बात करें तो फूलों में गुलाब, जरबेरा, गेंदा, इस तरह कई फूलों को हम उगा सकते हैं। साथ ही कई प्रकार की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। साथियों, अपनी फसलों को कीट और रोगों से बचाना हमारे लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहा। खुले खेतों में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, ऐसे में पॉली हाउस में बाहरी वातावरण का प्रभाव कम होने से रोग और कीटों का नियंत्रण थोड़ा आसान हो जाता है, जिससे दवाइयों पर खर्च भी कम हो जाता है। साथियों, हम सब बस यही चाहते हैं कि हमारी फसलें स्वस्थ हों और उससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। जब उत्पादन अधिक होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, मौसम से नुकसान कम होगा और बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा, तो निश्चित ही हम किसानों की आय बढ़ेगी। हमारे अपने देश में हम जैसे कितने ही किसान साथियों ने पॉली हाउस तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाया है। अब हमारी सरकार भी संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। कई योजनाओं में पॉली हाउस निर्माण पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। पॉली हाउस केवल बड़े किसानों के लिए नहीं है, ये हमारी किसान बहनों के लिए भी है। बहनें स्वयं सहायता समूह से मिलकर इसका लाभ उठा सकती हैं। यदि हमारी बहनें मिलकर सब्जी उत्पादन या पौधशाला का कार्य करें तो अच्छी आय पैदा कर सकती हैं। पौध उत्पादन, जैविक सब्जियां, आज इनकी बाजार में बहुत मांग है। साथ ही सजावटी पौधे, फूलों की खेती, ये सब जब हमारी महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का साधन बनता है तो घर में खुशी का वातावरण भी बनता है। तो भाई देर किस बात की, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस तकनीक को ज़रूर अपनाएं। साथियों, नए आविष्कारों और तकनीकों को अपनाने से कभी डरना नहीं चाहिए। हम कुछ बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी भी नई तकनीक को अपनाने से पहले हमें उसके बारे में उचित प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। हमें बाज़ार की मांग समझनी चाहिए, साथ ही सही फसल का चयन भी करना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था, इसका भी ध्यान रखना चाहिए और जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो ध्यान रखो कि जो पॉली हाउस जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो केवल एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हम किसानों के लिए नई संभावनाओं का एक द्वार है। तो भाई आप भी अपने लिए इस द्वार को ज़रूर खोलें। भैया याद रखो, आधुनिक तकनीक अपनाना खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना, जिससे हमारे बच्चे अब शहरों की ओर नहीं भागे और खेती को अपनाए। इन्हीं विचारों के साथ हम लेते एक छोटा सा विराम।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें।

0: टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक अपनी बहन सोमा जैन के संग। भाई, आज हमने कार्यक्रम में चर्चा करी पॉली हाउस की उपयोगिता पे। हमने जाना, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है जून का, ऐसे मौसम में ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि मौसम की मार पॉली हाउस पे बहुत कम पड़ती है। भाई, गर्मियों की बात हो रही है, जून का महीना गर्मियों का मौसम होता है, जहाँ हमें अपने पौधों की सुरक्षा के बारे में सोचना है, वहीं गर्मियों के मौसम में अपने पशुओं का भी हमें खास ध्यान रखना होता है। तो भाई, गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कैसा हो, कैसे करें, इस पे आज अधिक जानकारी लेते हैं। हम अपनी वार्ता में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है और पशुपालन भी कृषि का एक हिस्सा है। पशुपालन से कृषि और किसान भाई खेती के साथ साथ अधिक पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में विश्व का लगभग 16% पशुधन पाया जाता है और विश्व के कुल भूभाग का केवल 3% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। चारा फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 4.5% क्षेत्रफल ही आता है, लेकिन अन्य देशों में अच्छे चरागाह होने के साथ साथ 2% क्षेत्रफल पशुओं के चारा उगाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। और उत्तर प्रदेश में चारे की खेती 9.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है। इसके बावजूद भी पशुओं के लिए हरे चारे का अभाव रहता है। इसका मुख्य कारण गर्म तापमान और कम वर्षा है। किसान साथियों, इस क्षेत्र में मई जून के महीने में तेज व गर्म हवाएं चलती हैं और सिंचाई के संसाधनों का अभाव भी रहता है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसके चलते हमारे किसान साथी गर्मी के मौसम में हरे चारे का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हरा चारा पशुओं की शारीरिक वृद्धि एवं उनके उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए मैं किसान साथियों को सलाह दूंगा कि वो अपने पशुओं को वर्ष भर हरा चारा खिलाएं। हरे चारे को पौष्टिकता की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है। इसे खिलाने से दाने की भी अधिक बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हरा चारा काफ़ी मुलायम व स्वादिष्ट भी होता है। दलहनी फसलों का चारा तो प्रोटीन, कैल्शियम तथा फास्फोरस आदि से भरपूर होता है। किसान भाइयों, हरे चारे के अन्य स्रोत भी हैं जिनके द्वारा हरे चारे को वर्ष भर पशुओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वृक्षों से पत्तियों के रूप में भी हरा चारा प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी भूमि जहां खेती नहीं की जा सकती, वहां पर नीम, पीपल, खेजड़ी, गूलर, बबूल तथा अन्य चारे वाले पौधों को लगाकर उस भूमि को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। इन वृक्षों से गुणवत्ता युक्त पत्तियां भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि पशुओं के लिए चारे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कुछ चारे की फसलें हैं जो गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से बोई जा सकती हैं। चारा फसलों में बहु कटाई के लिए, जिनकी कटाई हम कई बार कर सकते हैं, जैसे नेपियर घास, सूडान घास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, लोबिया आदि हैं। इन फसलों को हमारे किसान भाई आसानी से उगा सकते हैं, लेकिन इन चारा फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान साथियों, हरे चारे की कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि अधिक पैदावार देती हैं, जैसे मक्का की उन्नत किस्में मुख्य रूप से, जैसे कि मंजरी, गंगा 2, विजय, मान, NHC 5, अफ्रीकन टॉल, प्रताप शंकर मक्का 1, अरावली प्रताप मक्का 5। और बाजरा की कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि चारे के लिए किसान साथी प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे जॉइंट बाजरा 1, राज बाजरा चरी 1, राज बाजरा चरी 2, MP 171, L 74, राजको बाजरा तथा BJ 104 आदि बाजरा की चारे की उन्नत किस्में मानी जाती हैं। किसान साथियों, लोबिया की उन्नत किस्में रसियन जॉइंट, UPC 5286, UPC 8705, कोहिनूर, EC 42।

0: UPC 9202 तथा HFC 42-1 आदि उन्नत किस्में हैं जिन्हें हम आसानी से उगा सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ ज्वार की उन्नत जातियां हैं जो बहु कटाई के लिए, जिनको एक से अधिक बार कटाई की जा सकती है, जो कि MP चरी, पूसा चरी 23, राजचरी 1, राजचरी 2 आदि हैं। पाइनियर घास की भी कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे कि जम्बो 16006, हरा सोना, पाइनियर 988, S0115 आदि किस्में उपयुक्त मानी जाती हैं। किसान साथियों, दलहनी चारा फसलों में तितली मटर और बालौर की उन्नत किस्मों में क्रमशः काजरी सिलेक्शन तथा काजरी 144 को किसान साथी बुवाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथी, चारा फसलों के लिए बीज की सही मात्रा प्रयोग करें। इसके लिए यदि मक्का की बात करें तो चारे वाली मक्का के लिए बीज दर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा ज्वार चरी के लिए बीज की मात्रा 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा बाजरा के लिए बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त है। इसके साथ ही बहुवर्षीय चारा घासों में बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। किसान साथी, हरे चारे की कमी को चारा संरक्षण से भी दूर कर सकते हैं। हरे चारे की कमी गर्मी के मौसम में आती है, अतः इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों द्वारा संरक्षण करके हरे चारे की उपलब्धता को वर्ष भर सुनिश्चित किया जा सकता है। किसान भाइयों, हरे चारे की फालतू मात्रा को बेकार होने से बचाने के लिए हे तथा साइलेज बनाकर गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को दूर किया जा सकता है। चारा संरक्षण करने से किसानों के पशुओं को वर्ष भर चारा आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ ही पशुओं में गर्मी के मौसम में दूध के उत्पादन का स्तर भी एक समान बना रहता है। पौष्टिक एवं अधिक चारे के लिए मिलमा खेती। किसान भाइयों, खेत में एक साथ जब दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाए तो उसे मिलवा खेती कहते हैं। इस पद्धति में हम चारा फसलों की खेती को कर सकते हैं। हम एक साथ कई सारे चारों के बीजों को मिश्रित करके, उनको मिलमा करके, इकट्ठा करके उनकी बुवाई करें। जब कई सारी फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है तो उनका चारे के लिए अधिक उत्पादन रहता है बजाय अलग अलग कर बोने के। इसलिए किसान साथी, गर्मी के मौसम में चारे की मिश्रित खेती करें और अधिक उत्पादन कर सकते हैं।
1: किसान साथियों, अभी हमने डॉक्टर अनिल कुमार से जाना कि पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन हम कैसे करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस वार्ता का लाभ लेंगे और जब आप अपने पशुओं के लिए चारे किया सोचेंगे तो जो बातें हमारे वार्ताकार ने बताई आप उनका भी ध्यान रखेंगे। भाई, पशु हमारे स्वस्थ रहें वो भी गर्मियों के मौसम में, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। और भी बातें, पर फिलहाल एक छोटा सा विराम।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, आज हमने बात करी पॉली हाउस खेती की उपयोगिता पर। जून का महीना, गर्मी अपना पूरे असर पर और अंतिम पड़ाव पर भी है, तभी तो हम आने वाली बरसात की तैयारी में जुटे हुए हैं। कहीं खेतों की जुताई हो रही है, कहीं बीजों का इंतजाम किया जा रहा है, तो कहीं आसमान की ओर देखकर पहली बारिश का इंतजार शुरू हो गया है। वैसे जून का महीना केवल खेती की तैयारी का ही नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं का भी महीना माना जाता है। पहले जैसे जैसे बरसात नजदीक आती थी, गांव में एक अलग सी रौनक दिखाई देती थी। चौपाल पर सब साथियों का इकट्ठा होना, खेती किसानी की बातें होना और हमारी बहनों का सावन के जुड़े लोकगीत गाना और बच्चे पारंपरिक खेलों में मस्त। लेकिन आज के समय हमारी कई सुंदर लोक परंपराएं धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही हैं, जिसमें पेड़ों की डाल पर झूले झूलना और कजरी गायन भी है। कजरी केवल गीत नहीं है, बल्कि हम

महिलाओं की भावनाओं, प्रकृति के प्रेम और सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब भी है। इन गीतों में बारिश, हरियाली, परिवार, रिश्ते और जीवन के विभिन्न रंगों का वर्णन है। पहले जब गांव की महिलाएं शाम को एक स्थान पर बैठकर सामूहिक रूप से कजरी गाती थी तो इससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता था। नई बहुओं को गांव की संस्कृति सीखने का अवसर मिलता था और बच्चों को अपनी परंपराओं का ज्ञान होता। लेकिन आज ये परंपरा धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। लोगों के पास समय ही नहीं है और अब मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को इन परंपराओं का ज्ञान दे पाएंगे, क्या वो इन परंपराओं के बारे में जान पाएंगी। हमारे लोकगीत का खजाना हम तभी अपने बच्चों को दे पाएंगे जब हम इन परंपराओं को जिंदा रखेंगे। परंपराएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी अपनी पहचान होती हैं। सावन के झूले और कजरी गायन, हमारे ये लोकगीत हमें प्रकृति, परिवार और समाज से जोड़ते हैं। इसलिए जिंदा रखें इन्हें, अपने आने वाली पीढ़ियों को दें। तभी तो हम कहते हैं भले ही कितने ही गीत आ जाएं, पर हमारे लोकगीत हमें हमारे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। हमारी पहचान हमें हमेशा याद दिलाते हैं हमारे ये लोकगीत। और जब बात लोकगीत की हो और जून का महीना हो तो एक ऐसी बेटी की याद आती है जो इस महीने अपने घर नहीं पहुंच पाती और बाबुल से बस यही कहती है, काहे को ब्याही परदेश।

तो बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक, और आइए अब आपको मौसम की जानकारी दे दें। भाई, इस समय मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं गर्मी और उमस बढ़ रही है तो कहीं बादल छाने और बारिश की संभावनाएं बनी रही हैं। ऐसे में हम किसानों के लिए मौसम की सही जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो जहां आज आसमान पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप खिली रही, वहीं आने वाले कल यानी कि मौसम के बारे में आपको बता दें कि थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कल दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, लेकिन शाम को बादलों की वजह से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो भाई, जिन किसान भाइयों की फसलें कटकर खुले में रखी हैं, वो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ढक कर रख लें, तेज हवा या हल्की बारिश में नुकसान हो सकता है। कल शाम को मौसम बदलने की संभावना को देखते हुए आज खेतों में ज़्यादा पानी लगाने से बचें। तो ये था मौसम का लेखा चुकला। अपनी फसलों का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार ही चलें। कल फिर कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी बहन सोमा जैन को आज्ञा

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि शाम 6:30 से आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम में खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक आप सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव्स पे। बाकी कार्यक्रमों का प्रसारण मोबाइल ऐप पर यथावत चलता रहेगा। और फिलहाल अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब हर बार की तरह स्वस्थ और खुशहाल होंगे और खुशहाली के साथ अपना जीवन जी रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी। और चलिए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही अब आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार भी होता है। साथियों, आपसे आज का प्रश्न है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारे खून को पंप करता है? साथियों, इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढ कर रखना है, जिससे कि जब हम आपको इसका उत्तर बताएं तब आप भी अपने जवाब को उससे मिला सकें कि वो सही है या नहीं। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं आज की खास चर्चा पर। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। दान करने से समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। वहीं दान करने वाला व्यक्ति दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का काम भी करता है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि साथियों दान का अर्थ ही है कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना। फिर वह दान चाहे धन का हो, समय का हो, ज्ञान का हो या फिर वस्त्र, अन्य शिक्षा और खून का ही क्यों ना हो। साथियों, ये सभी दान महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जिसमें कि रक्तदान तो आज के महादान की श्रेणी में माना गया है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं महादान रक्तदान की, क्योंकि आज है विश्व रक्तदान दिवस, जो कि आज ही के दिन यानी कि 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। साथियों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और उन रक्तदाताओं का सम्मान करना है जो निस्वार्थ भाव से अपना रक्त दान करके दूसरों को जीवन प्रदान करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा महान काम होता है। लेकिन साथियों, कई लोग इस महादान यानी कि रक्तदान करने से डरते हैं, जिसका मुख्य कारण उनमें जानकारी की कमी और कुछ गलत धारणाओं का होना है, जिसके चलते उन लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से शरीर में खून की कमी हो जाने से कमज़ोरी आ जाएगी। तो वहीं कुछ लोगों को ये डर भी रहता है कि रक्तदान करने से कोई बीमारी न लग जाए। इसी के साथ कुछ लोगों का मानना होता है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती या बार बार रक्तदान करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन साथियों, ये सभी बातें केवल एक भ्रम की तरह हैं, जो कि लोगों को भ्रमित करती हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। रक्तदान के दौरान केवल उतना ही रक्त लिया जाता है जिसकी पूर्ति हमारा शरीर कुछ ही समय में कर भी देता है। वहीं रक्तदान के लिए इस्तेमाल होने वाले सुई और उपकरण पूरी तरह नए और सुरक्षित होते हैं, इसलिए रक्तदान में किसी भी तरह का कोई संक्रमण या खतरा भी नहीं रहता। और फिर साथियों, बात यहाँ मानवता की भी है। अब आप लोग खुद ही सोच के देखिए ना कि हर रोज़ कितने अस्पतालों में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को खून की ज़रूरत होती होगी। वहीं गर्भवती महिलाएं और ऑपरेशन के दौरान कितने मरीजों को खून की ज़रूरत

पूरा करने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना होता होगा। साथ ही ऐसे समय में रक्तदाता ही उनके लिए आशा की किरण बन के आते हैं, जिससे किसी की जान तक बच जाती है। साथियों, हम सभी को यह समझना होगा कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय काम नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा है। जब हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी अनजान व्यक्ति के जीवन को बचाने में अपना योगदान देते हैं। तो साथियों, आप खुद ये बताइए कि इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। जिस दान से किसी व्यक्ति की जान बच रही हो, इससे महान काम और क्या हो सकता है। तो आइए साथियों, इस दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि रक्तदान के बारे में फैली गलत धारणाओं को दूर करेंगे। इसी के साथ इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और योग्य होने पर स्वयं भी नियमित ये दान यानी कि महादान रक्तदान करेंगे। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ आपको बता देते हैं आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का प्रश्न था कि हमारे शरीर का कौन सा अंग हमारे खून को पंप करता है, जिसका जवाब है हृदय। जी हाँ साथियों, हृदय एक निरंतर पंप की तरह हमारे शरीर में काम करता है, जो कि खून को यानी कि रक्त को पूरे शरीर में भेजता है और वापस लेता है, जिसके कारण शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंच पाते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। तो चलिए साथियों, वक्त है अब आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार रजत संक्रांति, जिसे राजा संक्रांति या राजा पर्व भी कहा जाता है, जो कि एक अनूठा और पारंपरिक त्यौहार है। यह त्यौहार मुख्य रूप से नारी सम्मान और कृषि यानी कि धरती माता को समर्पित माना जाता है। यह त्यौहार जून के महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। इसी के साथ ये त्यौहार वर्षा ऋतु के आगमन और कृषि चक्र की शुरुआत का संदेश भी देता है, जिसे उड़ीसा के लोग इस पर्व को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। साथ ही इस पर्व की विशेष मान्यता ये है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं। जिस प्रकार महिलाओं को सम्मान और विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धरती माता को विश्राम देने का संदेश ये त्यौहार देता है। यह त्यौहार साथियों 3 दिवसीय यानी कि 3 दिन मनाया जाता है, जिसके दौरान लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, घरों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं। इसी के साथ विशेष रूप से युवतियां और महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, जिसके चलते यह त्यौहार समाज में एक तरह से आनंद, भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा भी देता है। साथियों, आज के इस आधुनिक युग में इस तरह त्यौहार का महत्व बना हुआ है, क्योंकि यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ता है, साथ ही महिलाओं के सम्मान और सांस्कृतिक परंपराओं को भी आगे बढ़ाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मानव और प्रकृति का संबंध अटूट है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करेगी, जो कि सही बात भी है। इसलिए साथियों, हम सभी को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ प्रकृति एवं पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके संरक्षण के बारे में जागरूक होकर दूसरों को भी इस ओर जागरूक करना चाहिए। हालांकि साथियों, आज विज्ञान की नई नई खोजें पर्यावरण संरक्षण और खेती किसानी, इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन खोजों से

0: किसानों की आय तो बढ़ ही रही है, साथ ही फसलों को सुरक्षित रखने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिल रही है, जिसमें आज की ड्रोन तकनीक खेती किसानी करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। खेती में साथियों ड्रोन तकनीक विज्ञान की एक क्रांतिकारी खोज है, जिसका उपयोग किसान भाई फसलों की निगरानी, सटीक दवा, उर्वरक छिड़काव और मिट्टी के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। साथियों इसके कई सारे फायदे होते हैं, जिनमें से एक तो समय और पानी कम लगने से इन दोनों की बचत होती है, वहीं पैदावार भी दुगनी तेजी से बढ़ती है और इसी के साथ किसानों को जहरीले रसायनों से सुरक्षा भी मिलती है। तो साथियों हुई ना ये फायदे वाली बात, तो चलिए साथियों आगे बात और भी करेंगे, फिलहाल लेते हैं एक विराम।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर हम सबके लिए अनमोल है, जो कि प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल उपहार की तरह होता है। इसी शरीर की सहायता से हम पढ़ते हैं, काम करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हुए जीवन का आनंद लेते हैं, इसलिए इस शरीर की देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन साथियों कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और वे अपने जीवन में नशे या गलत आदतों को डालकर अपने शरीर का नाश कर बैठते हैं। साथियों नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क के साथ पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, जो कि धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति और भविष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथियों आइए जानते हैं आज की इस वार्ता के माध्यम से कि नशा किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है और किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वार्ता का नाम है नशा जीवन का नाश, जिसकी वार्ताकार है ऋतु कुलश्रेष्ठ।
2: नशा एक अभिशाप है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले नष्ट हो रहा है। नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही इससे सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है तथा अपने परिवार को भी समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। नशे के आदि व्यक्ति को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, वह धीरे धीरे नशे से अपराध की तरफ अग्रसर होने लगता है। नशा एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गई है। नशे से आजकल स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग तथा मजदूर भाई बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनका काम चौपट हो रहा है। शुरुआत में तो मजदूर भाई शराब और धूम्रपान को शौक की वजह से अपना लेते हैं, फिर बाद में ये ही शौक मजबूरी बन जाता है, जिससे जानलेवा बीमारी बन जाती है। अतः मेरा यह मानना है कि इन सभी मादक पदार्थों का सेवन का प्रचलन किसी भी स्थिति में किसी भी सभ्य समाज के लिए वर्जनीय होना चाहिए। शराब या नशे से हमारे श्रमिक भाइयों को शारीरिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे शराब के सेवन से पेट और लीवर खराब होते हैं, इससे मुख में छाले पड़ सकते हैं और पेट का कैंसर हो जाता है। पेट की सतही नलियों पर और पेट की आंतों को नुकसान पहुंचाता है, इससे अल्सर भी होता है तथा गले और पेट को जोड़ने वाली नली में सूजन आ जाती है और बाद में कैंसर भी हो जाता है। आर्थिक स्थिति पर असर। नशा के सेवन से श्रमिक भाइयों की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है। आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति का 50 रुपए रोज का खर्चा मानकर चलें, तो एक महीने का खर्चा 1500 रुपए तथा साल भर में 18,000 रुपए होता है। और यदि वह जीवन भर में 50 वर्ष शराब का सेवन करता है तो 9,00,000 रुपए फिजूल खर्च करता है। और यदि यही पैसे वो व्यक्ति किसी बैंक में डाले तो वो उन रुपयों को

0: एक पेंशन की तरह प्रयोग कर सकता है। ऐसे ही बीड़ी पीने वाले किसान भाई का बीड़ी व माचिस का खर्चा कम से कम 10 रुपये माने एक दिन का, तो उनका एक महीने का खर्च 300 रुपये होता है और साल भर का 3600 रुपये होता है। 50 वर्ष लगाएं तो 1,80,000 फिजूल खर्च में राख हो जाता है और शारीरिक कष्ट मिलता है। इसी तरह से सामाजिक स्थिति पर भी गलत असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर समाज का दखल व असर नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों के समझाने पर ये लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे बाप की पीते हैं क्या, और तब हर सभ्य समाज के व्यक्ति उन शराब पीने वाले लोगों से दूर रहने लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं, जिससे उन लोगों की जो नशा का सेवन करते हैं सामाजिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और उनके बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है, और कुछ लोग तो अपने घर का सामान बेचकर नशा करते हैं, और जब वह भी नहीं बचता तो वह आम नागरिकों के यहाँ लूटपाट करते हैं। इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे किसी भी तरह के नशे से मुक्ति के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है संयम। वैसे तो संयम कई समस्याओं का समाधान है, लेकिन नशा से मुक्ति के लिए तो संयम रामबाण इलाज है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को तंबाकू के सेवन की तीव्र इच्छा होती है तो उसे उस समय तंबाकू न देके कुछ और चीज दे देनी चाहिए, जैसे सौंफ। नशे से बचने के लिए पीड़ित व्यक्ति का आवश्यक है। इस समस्या से निजात पाने के लिए शासन के द्वारा जिला स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को छुटकारा दिलाने के लिए निशुल्क परामर्श सहित उपचार किए जाते हैं, तथा नशे के दुष्परिणामों को दर्शाने वाले पैम्पलेट, ब्रोशर आदि वितरित किए जाते हैं। नशा मुक्ति के लिए 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार 31 मई अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 2 से 8 अक्टूबर तक मध्य निषेध सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर हमें नशे से मुक्ति पाने के लिए संयम ही रखना पड़ेगा। एक पूर्ण नशा मुक्ति श्रमिक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सर्वाधिक सेवा कर सकता है। मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी के बारे में सोचें और नशा को छोड़ें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता नशा जीवन का नाश, जिसकी वार्ताकार थी ऋतु कुलश्रेष्ठ। तो साथियों, इस वार्ता के द्वारा आप सबने आप जान ही लिया होगा ना कि नशा हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है और प्रभावित करके हमें अंधकार की ओर धकेलता है। साथियों, इस तरह के अभिशाप से बचने और अपने जीवन को इस तरह की नशायुक्त गलत आदतों या लतों से बचाने के लिए संयम से बड़ा कोई और इलाज नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, फिर भी कई ऐसे छोटे मोटे घरेलू नुस्खे होते हैं जिनकी मदद से आप इस तरह की तलब को कम करने और मन को व्यस्त रखने में आपकी वो मदद कर सकते हैं। जिसमें पहला नुस्खा है साथियों, गुड़ और सौंफ का। यह साथियों, भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा गुड़ लेने से मुंह का स्वाद तो बदलेगा ही, साथ ही जिन लोगों को तंबाकू इत्यादि की तलब या इच्छा होती है वो भी कम महसूस होगी। इसी के साथ साथियों, इसमें तुलसी के पत्तों को चबाना भी लाभकारी होता है। तुलसी के पत्तों को चबाने से मुंह का जो स्वाद या तरोताज़ा रहता है, वहीं इस तरह की बुरी आदतों या लतों से आपको दूर रखने में वो मदद करती है। तो साथियों, ये थे घरेलू नुस्खे जिनका आप प्रयोग करके इस बुरी आदतों या लतों से दूर रह सकते हैं। अब आपका जो समय है वो है संगीत का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये मधुर गीत।

0: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।

0: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल है। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत वेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव परिवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव परिवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, विशाल प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी का वहां स्लोवाक शैली में पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिसमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है। 3 अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसैनिक पोत शारदा ने श्रीलंका के कोलंबो की यात्रा पूरी कर ली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। यात्रा के दौरान श्रीलंका की नौसेना के साथ कई पेशेवर प्रशिक्षण और खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज और किशोरी कुमकुम मोहन ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओ ये जिन

और किम जे डेओ को हराया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं। समय है विविधा कार्यक्रम का। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता प्रवासी पक्षियों पर आसन्न खतरे। वार्ताकार हैं डॉक्टर नवीन शर्मा।
2: प्रवासी पक्षियों पर आसन खतरे। प्रवासी पक्षियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे हर साल प्रजनन और सर्दियों के मैदानों के बीच यात्रा करते हैं। प्रवासन एक पक्षी के जीवन चक्र का रोमांचक तथा खतरनाक हिस्सा है। पक्षियों को अधिक जोखिम शिकार और अधिक ऊर्जा व्यय करके बेहतर गुणवत्ता वाले आवासों में सर्दियों और प्रजनन से लाभ प्राप्त करते हैं। प्रवास के दौरान तूफान शिकार मानव निर्मित वस्तुएं जैसे पवन टरबाइन ऊंची इमारतें और भोजन की कमी प्रमुख खतरे हैं। प्रवासी पक्षी सर्दियों में ध्रुवीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों से दूर चले जाते हैं। पक्षियों का प्रवासन नियत एवं नियमित निकट एवं सुदूर स्थान तक होता है। बसंत प्रवास के दौरान पक्षी भोजन के अस्थाई अतिरेक का फायदा उठाने के लिए अपने प्रजनन स्थलों पर लौट आते हैं जिससे उन्हें और अधिक युवा पैदा करने की अनुमति मिलती है। पक्षी समूह व्यवस्थित क्रम में उड़ते हैं जैसे बतख बगुला गीस हंस जो रात्रि में उड़ान भरते हैं। पक्षी नदियों की धारा समुद्री किनारे बर्फ के द्वीप पर्वत श्रृंखला ठंडी व गर्म वायु प्रवाह से अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश तथा रात्रि में चंद्रमा तारों के समूह के प्रकाश की मदद लेते हैं। प्रवासी पक्षियों की कई आबादी गंभीर रूप से घट रही है। इसके प्रमुख कारण वनों की कटाई निवास स्थान का नुकसान शिकार कीटनाशकों का प्रयोग शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन शामिल है। प्रवासी पक्षियों को प्रमुख खतरों में खराब मौसम मुख्य है। वायु में उड़ने के दौरान अधिकतर मौतें होती हैं। तूफान धुंध या बारिश इसके प्रमुख कारण हैं। इन प्रतिकूल परिस्थिति में छोटे पक्षी छोटे कीट खाने वाले छोटे पक्षी आगमन के बाद बहुतायत में मारे जाते हैं। क्योंकि ये युवा पक्षी अनुभव की कमी के कारण वयस्कों की तुलना में चरम मौसम के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठंडे तापमान के कारण प्रवासी पक्षियों की आबादी में 30-90% तक गिरावट आती है। मार्च 1986 में बहुत ठंड के कारण गुच्छेदार बत्तख और आम पोचार्ड भूख से मर गए थे। प्रवासी पक्षी संधि यूएस 1916 और प्रवासी पक्षी सम्मेलन अधिनियम कनाडा 1917 द्वारा प्रवासी पक्षियों को मारना या पकड़ना अवैध हो गया है। 19वीं सदी के शुरुआत में पक्षी संरक्षण अधिनियम पारित किए गए। कई देशों में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। अवैध अंतर्राष्ट्रीय पक्षी व्यापार $1 अरब का है। पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को पकड़कर बेचा जाता है। विश्व के प्रमुख प्रवास मार्ग में भूमध्य सागर के छोटे द्वीपों का समूह माल्टा है। कई सालों तक शिकारियों ने माल्टा द्वीपों पर लाखों पक्षियों को मार डाला। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1990 ने प्रवासी पक्षियों की रक्षा के लिए विशेष रैप्टर शिविरों का आयोजन कर पक्षियों की रक्षा की है जिससे मृत्यु में कमी आई है। वैज्ञानिक अनुमान है कि हजारों पक्षी मत्स्य पालन के रूप में मारे जाते हैं। पक्षी मछली पकड़ने के दौरान ड्रेजिंग गिल नेट

0: बॉटम ओटर, ट्रॉलिंग और लॉन्ग लाइन के द्वारा कमजोर समुद्री पक्षी अल्बाट्रॉस और शियर वाटर्स पर खतरा मंडराता है। तेल प्लेटफार्मों पर टकराव और भ्रम समुद्री पक्षी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था फ्लेयर्स भोजन और अन्य दृश्य संकेतों से आकर्षित होकर तेल रिंग के आसपास एकत्रित होते हैं। समुद्री पक्षी तेल प्लेटफार्म से सीधे टकराते हैं या तेल रिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए अत्यधिक जहरीले कीटनाशकों का उच्च मात्रा में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए DDT प्रवासी पक्षियों की संख्या में ये कीटनाशक अप्रत्यक्ष रूप से पक्षियों को मार डालते हैं। इसी वजह से ये कीटनाशक उत्तरी अमेरिका में प्रतिबंधित हैं। प्रकाश प्रदूषण से बाधित नेविगेशन दुनिया भर के शहरों में रात का आसमान कृत्रिम रोशनी से ढका रहता है। ये रोशनी इमारतों, सड़कों और अन्य मानव संरचनाओं से प्रकाशित रहती है। शहर भर में उड़ान भरते समय प्रवासी पक्षी आकाश में कृत्रिम रोशनी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये पक्षी प्रकाश किरणों का अनुसरण करते हैं। रात में प्रवास करने वाले पक्षी नेविगेशन के लिए प्रकाश पुंजों का उपयोग करते हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत जैसे प्रकाश स्तंभ, टावरों, अन्य ऊंची इमारतों से सीधे टकराकर रात में पक्षियों की प्रत्यक्ष मृत्यु हो जाती है। वनों की कटाई प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ऐसे क्षेत्रों में शिकारियों के अधिक होने से घोंसले के शिकार में वृद्धि होती है। ब्लू जे, कॉमन ग्रिकल, रैकून, कुत्ते, बिल्ली, शिकारियों की संख्या अधिक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि वे पर्यावरणीय अवसरों का फायदा उठाने के लिए अनुपयुक्त समय पर पहुँचते हैं और वहाँ निवासी प्रजातियों के साथ उच्च प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। पक्षी अपने सर्दियों के मैदानों को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनके पास अपनी प्रवास यात्रा का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और वसा का भंडार ना हो। और चूंकि जल्दी पहुंचने वाले पक्षियों को आमतौर पर सबसे अच्छे संसाधन मिलते हैं, इसलिए अधिकांश प्रजातियों को जल्दी प्रस्थान के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध से उन प्रवासी पक्षियों के लिए खतरा बढ़ गया है जो साइबेरिया और ठंडे यूरोपीय देशों से सर्दियों में प्रवास के लिए यहाँ आते हैं। पक्षी विशेषज्ञों के मुताबिक प्रवासी पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के माइग्रेशन रूट से यूरोप व एशियन देशों को वापस लौटते हैं, लेकिन बमबारी, रेडिएशन और फाइटर प्लेन लड़ाकू हवाई जहाज की उड़ान से उनकी घर वापसी में खलल पड़ रहा है। रूस यूक्रेन के इस युद्ध क्षेत्र के वेटलैंड से प्रवासी पक्षी जैसे ग्रे लेग गूस, कॉमन शेल्डक, रूडी शेल्डक, मलार्ड, नॉर्दर्न पिंटेल, नॉर्दर्न शोवलर, कॉमन पोचार्ड और रेड क्रेस्टेड आदि प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। भारत आने वाले पक्षी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के 5 माइग्रेशन रूट का प्रयोग आने और जाने के लिए करते हैं, जिसे ग्रीन रूट के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भारत सहित 30 देशों को कवर करता है। प्रवासी पक्षियों को एशिया प्रशांत क्षेत्र काफी पसंद है, लेकिन अवैध शिकार के चलते यह क्षेत्र इन पक्षियों के लिए कब्रगाह बन गया है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि 1970 के दशक से लेकर अब तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3/4 प्रवासी पक्षियों का शिकार किया जा चुका है। समुद्र और नदियों के किनारे के बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण निवास स्थान नष्ट होने से प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था प्रवासी पक्षियों पर आसन खतरे। वार्ताकार थे डॉक्टर नवीन शर्मा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें,
2: जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का

0: पाना, मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
2: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
4: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जान

0: कर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
4: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह

0: 9 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey girls, hi, congratulations.
2: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी, ये।
6: चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
9: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और जब देश की मिट्टी की बात आती है तो हमारी कृषि, हमारे किसान, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। धरती का वह वीर महान कहलाता है सच्चा किसान। सुबह सवेरे खेतों जाए, दिन भर मेहनत करता जाए, धूप वर्षा हो या तूफान, नहीं छोड़ता अपना काम। हल चलाकर बीज है बोता, आशा का दीपक है संजोता। हरी भरी जब फसल लहराए, उसका भी मन खुश हो जाए। सबको भोजन वही खिलाता, अन्नदाता कहलाता। उसके श्रम का मान करें हम सब, उसका सम्मान करें। जय किसान जय कृषि का नारा, उससे रोशन देश हमारा। मेहनत, साहस और बलिदान, यही है सच्चे किसान की पहचान। जी हाँ, कृषि और किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि न केवल देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन भी है। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए अन्न, फल, सब्जियां और कृषि उत्पाद उपलब्ध कराता है। किसान खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं। वे मौसम की परवाह के बिना भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई और फसल की देखभाल करते हैं। अच्छी फसल के लिए किसान को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, कीटों का प्रकोप तथा बढ़ती लागत। इसके बावजूद वे पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करते रहते हैं।

श्रोताओं, सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने देश और अपने देश की मिट्टी से जुड़ी। और आज हम बात कर रहे हैं इस देश की मिट्टी के किसान की, कृषि की। कृषि को जीवन शैली के रूप में अगर देखा जाए तो किसानों को देवता के समान पूजा जाता है। भारत में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दालें जैसी कई प्रमुख फसलें हैं। कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, तिलहन जैसी नकदी फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर जैसी बागानी फसलें हैं, और फल सब्जियां जैसी बागवानी फसलें हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह लगभग 40 से 50 प्रतिशत आबादी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, और देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 17 से 18 प्रतिशत तक का योगदान देती है। कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। भारतीय कृषि के प्रमुख महत्व को अगर आप इस तरह से समझें कि आजीविका और रोजगार का मुख्य साधन देश की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग आधा कार्यबल अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का मुख्य स्रोत भी है। कृषि ही वह आधार है जो भारत के 1.4 अरब से अधिक नागरिकों और दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए भोजन और पोषण की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। और अगर औद्योगिक विकास के आधार की बात की जाए तो भारत के कई प्रमुख उद्योग जैसे कपड़ा, चीनी, जूट और खाद्य प्रसंस्करण पूर्ण रूप से कृषि से ही प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। राष्ट्रीय आय और विदेशी व्यापार भारत कृषि उत्पादों जैसे मसाले, चावल, चाय और चीनी का दुनिया भर में एक प्रमुख निर्यातक भी है। तो अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफी अधिक रहता है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। यह ऐसे में

बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जबकि देश में अगर जो बेरोजगारी की समस्या है उसे हमें खत्म करना है, तो दिन प्रतिदिन भारतीय कृषि को देश की अर्थव्यवस्था में और योगदान देना चाहिए, क्योंकि यही वह उपाय है जो देश की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कृषि और किसान पर। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा भारत लहलहाती फसलों के साथ दमकता चमकता रहता है, और इन फसलों को अपनी मेहनत लगन श्रम से सींचते हैं हमारे किसान, जो देश के वो नायक हैं जिनकी दिन रात की मेहनत हमारे लिए भोजन प्रदान करती है। मौसम की मार, धूप, सर्दी, गर्मी सबको अनदेखा करके ये निरंतर लगे रहते हैं अपने कर्तव्य पथ पर। कृषि और किसान देश की समृद्धि के आधार स्तंभ हैं। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी प्रगति करेगा। इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और कृषि के विकास में योगदान देना चाहिए। किसान की मेहनत और त्याग के कारण ही हमारे घरों तक भोजन पहुंचता है। अतः किसान का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत विशेष है, और इसी के साथ हमारे किसान भाइयों को हमारा दिल से सलाम भी है।

ओ किसान, तू है महान, मैं तुझे नमन करता हूँ। तेरे जैसा कुछ कर पाऊँ मैं भी ये जतन करता हूँ। तेरी त्याग तपस्या का मोल कोई चुका ना पाए, एक तेरे ही कारण हर प्राणी में नई चेतना आए। तेरी महिमा कितना करूँ, अथक हो तुम सेवाधारी, एक तेरे ही कारण भोजन पाती है दुनिया सारी। जन जन की सेवा करने का तूने धर्म अपनाया, खुद को मिटाकर जीवन देना तूने सबको सिखाया। आज के कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में बस इतना ही। अपने रेडियो साथी शशांक शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं और अब समय है गाने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को सुनने का।

चित्रा की आवाज़ में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम था बॉम्बे। महबूब के लिखे गीत को संगीत से संवारा था AR रहमान ने। अब सुनते हैं बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में रहना है तेरे दिल में फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की है, संगीत रचना हैरिस जयराज की।

0: रहना है तेरे दिल में, इस फिल्म में भी आपने सुना बॉम्बे जयश्री को। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा था हैरिस जयराज ने।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा,

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले को। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था संजीव दर्शन ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म ताल से। आवाजें हैं आशा भोसले, आदित्य नारायण, ऋचा शर्मा की। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत रचना AR रहमान की।

ताल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संगीत का कारवां अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि समय है चित्रपट संगीत का।

0: मुझे किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

अलका याग्निक साथी की आवाज़ में अभी आपने सुना तेजाब फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म थानेदार से। आवाज़ें हैं बप्पी लहरी, अनुराधा पौडवाल और साथी की। इंदिवर की रचना को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

थानेदार फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मोहित शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नाइस के ऐतिहासिक विला कैरियोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

0: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नया प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इन 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: ₹140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में

0: भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
1: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
2: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
3: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप हेल्पलाइन नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है।

0: कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बना है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तारुवांडे के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनिता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नाइस के ऐतिहासिक विला कैलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। असम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के टी20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस

0: के सदर इमैनुएल मैखों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्त की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीरे खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैखों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बैरोट और दीगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीरे आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैखों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। तीन रोजा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वजा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की कयादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के इख्तराई को निजाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीरे आज़म मोदी को आजादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीरे आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
3: भारत दुनिया के लिए भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इंफोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब

0: गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीरे आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो जीएसटी हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की जीएसटी इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में एनडीए हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त, पॉलिसी इस्लाहात, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी

0: के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवन पंढरपुर पर वाके तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट वन के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उथनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमतनामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेस एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: दिस इज डेली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर द नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। दिस इज आकाशवाणी, टाइम फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स। टुडे इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इट इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली on June the 14th every year and is one of the 11 official global public health campaigns recognized by the World Health Organization to raise awareness about the constant need for safe blood and to thank voluntary unpaid blood donors. It is in this backdrop that we now bring you a feature titled The Thread Between Us.

0: संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ही हेल्स फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली। श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाई हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी, लेटर ट्रेन्ड अंडर विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव एंड लया एक्सपर्ट विद्वान आकेल्ल मल्लिकार्जुन शर्मा। ही इज ए एमए म्यूजिक गोल्ड मेडलिस्ट।

0: ऐसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे श्रीराम इज वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ही हेल्स फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली। श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाय हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी, लेटर ट्रेन्ड अंडर विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव एंड लया एक्सपोनेंट विद्वान आकेल्ल मल्लिकार्जुन शर्म। ही ईज एमए म्यूजिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रम श्री सुरवरम प्रतापरेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद वेर ही ईज करंटली पर्सुइंग हिज पीएचडी इन म्यूजिक। ईक्वली एडेप्ट एट कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट्स एंड नाम संकीर्तनास ही परफॉर्म्स एट मेजर फेस्टिवल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। एज अ डेडिकेटेड टीचर ही हैज ट्रेन्ड मेनी स्टूडेंट्स टू कॉन्सर्ट लेवल। ही ऑल्सो वॉलंटियर्स विथ संप्रदाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग फाइन आर्ट्स।
0: श्री जे श्रीराम अपने गायन का आरंभ बालाजी पेटा वेंकट रमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकट रमना भागवतार इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ श्याम शास्त्री इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू विलोम चापू ताल।

श्री जी, श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं, जो राग शंकरावरणम तथा आदि ताल में निबद्ध है।

श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल.

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri J. Sri Ram in the broadcast of Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Ridangam by Vidwan Piravali Jayabhaskar and on Ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasraya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इन्होंने 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और

0: हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ते निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप

0: पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakia.